0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार

0: अपने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले जानते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

बातों में बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो

आप सुन रहे हैं विविध भारती। आइए नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा भी। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216। 6:45 पर इन दिनों आप सुन रहे हैं संगीत सरिता में श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनीस, प्रस्तुति है मनीषा जैन की। सुनिए इस श्रृंखला का 11वां भाग। भूले इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। पर चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक रूप कुमार राठौड़ पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज रात 9:30 पर। 10 बजे सुनिए पिटारा में आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। पर सदाबहार नगमे। 3 बजे सुनिए सखी सहेली। 4 बजे हेलो फरमाइश। 5 बजे छाया गीत। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए इनसे मिलिए। निर्देशक इकबाल अली से यूनुस खान की बातचीत का 2रा भाग। प्रस्तुति है जुबैर खान की। 8 बजे हवा महल में सुनिए नाटिका कटते कगारे। लेखन है चंद्र भारद्वाज का। निर्देशन है गंगा प्रसाद माथुर का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 10 बजे सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। माफ कीजिएगा, 9 बजे आप सुनेंगे आपके लिए कार्यक्रम, फिर 10 बजे आप सुनेंगे छाया गीत कार्यक्रम। 10:30 पर ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

भरत को ये प्रतीति है कि श्री राम को वनवास दिलाना काल का कुचक्र है। कैकई तो मात्र माध्यम बन गईं। उन्हें चिंता इस बात की है कि किस प्रकार श्री राम का राज्याभिषेक कराया जाए। ये सोचकर मन में आशा का संचार होता है कि श्री राम गुरु की अवज्ञा नहीं करेंगे, किंतु दूसरे ही क्षण मन में ये विचार भी आता है कि वशिष्ठ जी श्री राम की रुचि को ध्यान में रखकर ही जो कहना होगा कहेंगे। भरत स्वयं तो मात्र सेवक हैं, जिसका हठ करना भी कुकर्म होगा। जब भरत समेत सभी सभासद वशिष्ठ जी के सम्मुख उपस्थित हुए तो मुनिवर ने आशातीत कुछ भी नहीं कहा। बोले, श्री राम सत्य प्रतिज्ञ और वेदों की मर्यादा के रक्षक हैं। उनका जन्म जगत के कल्याण के लिए हुआ है। नीति, प्रेम, परमार्थ तथा स्वार्थ को उनसे अधिक कोई नहीं जानता। वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, चंद्र, दिक्पाल, माया, जीव सभी की आज्ञा प्राप्त है। अतः उनकी रुचि जानकर ही कुछ कहने में सबका हित होगा।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 216।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। ये है इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, बहुत से संगीतकारों की रचनाओं को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उन्होंने रिदम पैटर्न के बारे में, ताल जो बज रहा है उसमें अपना कुछ दे करके, जोड़ करके एक नया पैटर्न बनाया है, नया रिदम पैटर्न देखने को मिलता है, वो उस गीत की जरूरत हो। जैसे आर डी बर्मन साहब का एक एल्बम है दिल पड़ोसी है,
2: हाँ।
1: उसमें जो गीत है उसकी झलक पहले सुनते हैं।

0: पड़ोसी है एल्बम से ये जो गाना था गुलजार साहब की रचना है, आशा जी के स्वर में हमने सुनी, और इस रचना में जो ताल बज रहा था वो स्वयं उस गीत के लिए आरडी साहब ने
1: कंपोज किया था
0: या उसे बनाया था, ये कह सकते हैं। ऐसे ही प्रयोग धर्मिता फिल्म संगीत के बारे में भी देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल देखने को मिलती है, और देखिए कि फिल्मी गीतों का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य उसी वजह से आया है और वो उस गाने को चिरंजीवी बनाता है।
0: जी जी जी।
1: तो इसमें जब हम लोग ये रिदम पैटर्न की बात करते हैं
0: जी,
1: तब मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी लगता है, जैसे संगीतकार होते हैं, अरेंजर होते हैं, तो उसी तरह से फिल्मों में रिदम कंपोज़र भी रहे हैं। अण्णा जोशी, मारुति कीर, भवानी शंकर, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका योगदान है कि जिस वजह से हमको ये इतने अच्छे अच्छे पैटर्न सुनने को मिले हैं। तो ये जो होता है, गाना जब बनता है तब गाने के साथ में उसका रिदम कैसा होना चाहिए, उसका रिदम पैटर्न क्या होना चाहिए
0: जी,
1: ये तय करने वाले ये रिदम के अरेंजर होते हैं, और वो किस वाद्य पे ये पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन से वाद्य का उसमें प्रयोग करना उचित होगा, ये वो तय करते हैं।
0: अच्छा।
1: और उस वाद्य के ऊपर फिर वो जब पैटर्न बजता है तब जाकर वो रिदम अच्छा तैयार होता है, बहुत सुनने को अच्छा लगता है। तो रिदम का महत्व इसलिए है कि वो शुरू में ही उसके ऊपर काम किया जाता है, शुरू में ही उसके ऊपर सोचा जाता है कि ये गाने के लिए हम रिदम का पैटर्न किस तरह रखेंगे, इसमें वेरिएशन लाने के लिए कहाँ पर उसको मोड़ देंगे, कहाँ पर उसका वो मोड़ को फिर से और एक मोड़ देकर दूसरी राह पर या जो मूल प्रवाह है उसमें
0: जी,
1: लाएंगे
0: जी।
1: तो मूल प्रवाह से मोड़ लेकर जाना, फिर मूल प्रवाह में आना, ये सारी चीज़ें जो है वो रिदम पैटर्न के लिए वो अरेंजर तय करते हैं। तो ऐसे में देखो, जैसे तबले के साथ में ढोलक बजा, फिर वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ में तबला बजा, तो उसी तरह मल्टीपल आर्टिस्ट मतलब बहुत ज़्यादा कलाकार लेकर हम लोग मतलब एक अच्छा रिदम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ऐसा जब हमारे प्रतिभाशाली संगीतकारों को लगा तो उन्होंने क्या किया कि दो तबले की बजाय और चार पांच तबले, छह तबले, सात तबले, ऐसे एक साथ बिठाए,
0: रिदम सेक्शन को बढ़ाया,
1: रिदम सेक्शन को बढ़ाया, जबकि मल्टीपल ट्रैक्स है लेकिन हर एक कलाकार जो है उसका बजाने का एक अपना लहजा होता है, उसका उस वाद्य के ऊपर का नियंत्रण अलग होता है। तो इसलिए चार पांच लोग जब एक साथ बजाते हैं तब वो चार ट्रैक एक ही आदमी से बनाने से कुछ अलग होता है, तो इसलिए चार पांच लोगों को बिठाकर एक साथ में एक पैटर्न उनको दिया जाता है और वो पैटर्न वो लोग बजाते हैं
0: जी,
1: और उसमें फिर गाना जब हम लोग सुनते हैं तो जैसे भोर भई पनघट पर मुहे नटखट श्याम सताए,
0: बहुत सुंदर
1: तो
0: रचना है,
1: उसका पैटर्न भी बहुत खूबसूरत है और तबला भी एक साथ बजा हुआ है।
0: तो क्यों ना इस गीत की झलक सुन ली जाए।
1: बिल्कुल।

0: सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से इस गीत की झलक आपने सुनी श्रोताओं। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। रविंद्र जी, इस विश्व की, इस दुनिया की एक लयबद्धता है
1: जी,
0: ऐसे ही हमारे जीवन के, सभी के जीवन की अलग अलग लय है। एक विशिष्ट लय में हम सब चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कला के साथ, संगीत के साथ कैसे इसे जोड़ करके और समृद्ध किया जा सकता है?
1: जी, हमने इस पूरी श्रृंखला में ताल के बारे में बात की है
0: जी,
1: तो अब जब इसका समापन करने जा रहे हैं तो जीवन का और ताल का कैसे संबंध है उसके बारे में बात करके मैं मेरी बात पूरी करना चाहूँगा
0: जी।
1: पूरी सृष्टि जो है उसमें एक ताल है। ये ताल जो होता है वो ताल, जैसे सूरज का रोज सुबह आना, शाम को सूरज का ढलना
0: जी,
1: फिर दूसरे दिन सुबह आना, तो ये एक प्रकार का चक्र है, ताल चक्र जिसे हम कहते हैं
0: जी।
1: सम है, काल है, फिर सम आई, फिर काल आया। तो उस तरह जीवन में हर जगह, मतलब सृष्टि में तो हर जगह आपको ताल खिलता हुआ दिखेगा,

0: पृथ्वी जो है वो सूरज के इर्द
1: इर्द गिर्द चक्कर लगा रही
0: गिर्द
1: है।
0: चक्कर लगाती है, तो उसमें भी एक ताल है
1: जी
0: पूरे सृष्टि में। जब अगर झरने से पानी बह रहा है तो उसकी एक मधुर नाद आती है, सुनाई देती है, उसमें भी एक ताल होता है।
1: जी
0: तो ऐसे हर जगह पर हमारा जो जीवन है वो पूरा तालमय है। घड़ी की टिक टिक जिस समय के साथ में हम लोग चलते हैं
1: जी जी
0: वो भी एक ताल दर्शाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा हृदय जो है
1: जी हाँ
0: वो भी एक ताल में चल रहा है, और जब तक ये ताल हमारा सही चलता है तब तक हमारा जीवन भी सही चल रहा है। इसलिए हम लोग जो है ना शब्द प्रयोग करते हैं कि तालमेल बनाए रखो।
1: जी हाँ जी
0: तो
1: हाँ
0: तालमेल जो है ये मेल होना जरूरी है ताल का जीवन में, और वो मेल अगर अच्छे से होता है तो पूरा जीवन हमारा अच्छा होता है।
1: क्या बात है।
0: मैं अपने इस कार्यक्रम का समापन स्वर सम्राज्ञी लता दीदी, जिनके गले में हम लोग कहते हैं कि माँ शारदा बसी है,
1: जी
0: और जिनका गाना जो है वो अपने आप में एक ताल है। मतलब जैसे हमने कहा शुरू में कि सुर और ताल ये संगीत की बुनियाद है,
1: जी
0: और उसका मिलाप जिसमें बहुत अच्छे से होता है वो हमें सबसे ज़्यादा कर्णप्रिय लगता है, सबसे ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो लता दीदी का गाना हमें इसलिए अच्छा लगता है कि सुर और ताल इसका जो मेल उनमें है वो देखते देखते खुशी से जीवन भर जाता है।
1: जी। तो श्रोताओं को भेंट करने के लिए लता जी के स्वर में वो कौन सा गीत है?
0: पलकों की छाँव में इस
1: जी
0: फिल्म का कोई मेरे माथे की बिंदिया,
1: वाह वाह, बहुत सुंदर
0: ये
1: गीत है और एक निराला ही ढंग है इसमें ताल का, और वो प्रयोग धर्मिता की जो हम बात कर रहे थे
0: हाँ
1: वो यहाँ हमें दिखाई देती है। आइए सुनते हैं यही गीत।

0: पलकों की छांव में इस फिल्म से लता जी के स्वर में ये सुंदर सा गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर, ये श्रृंखला अब समाप्त होती है। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे आकाशवाणी के अश्रेणी संगीत रचनाकार, आकाशवाणी के ही आत्मीय श्री रविंद्र खासनीश जी। रविंद्र जी, विविध भारती के सुनने वालों की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से हम आपके हृदय से आभारी हैं।
1: जी धन्यवाद।
2: सिने संगीत में तबले का दौर, इस श्रृंखला की 11वीं और अंतिम कड़ी अभी आपने सुनी। इस श्रृंखला में हमारे विशेष अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आवारा फिल्म के इस गाने के साथ, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें।

0: धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बाजी फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना गीता दत्त की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवान।

0: नदी को वज्रदंती। भारत
1: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप नौजवान फिल्म से ये गाना, साहिर लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना। आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
2: इस संदेश के पहले आप सुन रही थी सजा फिल्म का गाना। संध्या मुखर्जी, हेमंत कुमार की आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हम है राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना है खेल खेल में, इस फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में गुलशन बाबरा के बोल, संगीत है राहुल देव बर्मन का।

सीता और गीता इस फिल्म से आप सुन रहे थे ये गाना आशा भोसले और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे लाखों में एक, इस फिल्म से ये गाना। आनंद बख्शी के बोल, संगीत राहुल देव बर्मन का। कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

0: जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
4: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
4: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू

0: ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार

0: बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब ₹1,000 तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

0: में लिखा, अब तू भाग में लिखा।
1: अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा

कूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चे के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

मैंने नहीं तो

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा

बच्चों के हैं तीन काम, खेल कूद, पढ़ाई और आराम। इनमें से सबसे जरूरी हमेशा रहेगा खेल कूद का काम। पसीने में लथपथ, पार्क के एक कोने से दूसरे कोने तक की जोर की दौड़, थकान के बावजूद सबसे ऊंची आवाज लगाएगा कौन? बच्चों के यही खेल कूद की तो बातें हैं जो उन्हें बनाती हैं मेंटली, फिजिकली और इमोशनली स्ट्रांग।

बच्चों की इस खलबली को आप सुन रहे थे भूतनाथ फिल्म से। कौस्तव घोष, अपर्णा भागवत, भारवन सुरेश और स्नेहा सुरेश की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल, म्यूजिक विशाल शेखर का। इस खलबली को जारी रखते हैं इस अगले गाने के साथ। इंटरनेशनल प्ले डे पे जारी है बच्चों की खलबली।

श्रेया घोषाल, सुजैन डिमेलो और रूप कुमार राठौर की आवाज में सुन रहे थे वीर फिल्म से आप ये गाना, गुलजार के बोल, साजिद वाजिद का संगीत।

वीर जारा फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में ये गाना, जावेद अख्तर के बोल, संजीव कोहली का संगीत।

0: अनवर फिल्म से आप सुन रहे थे रूप कुमार राठौर की आवाज में ये गाना। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित है रूप कुमार राठौर पर, तो जानिए इनके बारे में कुछ बातें, कुछ किस्से इस कार्यक्रम के बाद यानी 9:30 पर, जिसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज रात 9:30 पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर की हुए पकाए भूर की।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम

0: लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौड़ जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्रिबिक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था। पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर

एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौड़ ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

मुझे याद है जैसे मैं 6 साल का था, तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहाँ पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी रादर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए, और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजाना शुरू किया, तबला की आवाज़ मुझे सुनाई दी और मेरी आँख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खां साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे, और 1 घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज़्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रूप कुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमी अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से

आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई और कुछ चीज़ें जो है अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित श्यामता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तरखवा खां साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खां साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खां साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला। उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: मुंबई में, और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

कीजिए सूरत एफएम के साथ अपनी दिल की बात।

0: रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन कीजिए हर रविवार सुबह 9 से 1 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर 02612236209। सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गाने हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक।
1: हेलो सूरत एफएम स्पीकिंग 101.1 मेगाहर्ट्ज़ सूरत एफएम।
2: रात 10 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: Fantastic fun for family.
1: 101.1 megahertz. Surat FM.
4: हेलो सूरत एफएम स्पीकिंग।
5: शंकर आवानी हम से बोल रहे हैं। दीदी
4: शंकर भाई कैसे हो?
5: बस ठीक है, बहुत दिन बाद फोन लगा है।
4: क्या बात है? कैसा है हालचाल? सब ठीक ठाक?
5: जी जी।
4: दिन की शुरुआत कैसे की आपने?
5: नाश्ता क्या नाया और उसके बाद दिन अच्छा गया।
4: अच्छा क्या नाश्ता किया आपने?
5: पौआ पौआ।
4: बोलिए बोलिए।
5: विशाखा कैसे हो? बहुत दिन बाद फोन लगा है, आपसे साथ बात हो गई।
4: मैं एकदम बढ़िया हूँ।
5: चलो
4: हाँ। अच्छा है ना कि आपने बहुत दिनों के बाद कॉल किया और मेरे साथ बात हो गई आपकी।
5: जी जी जी बहुत मजा आ गया।
4: अच्छा आपकी तबीयत ठीक है?
5: हाँ एकदम गुड, एकदम गुड।
4: वेरी गुड वेरी गुड। वॉक पे जाते हो?
5: जी जी।
4: अपने दोस्तों को मिलते हो?
5: जी जी।
4: ओ वेरी गुड।
5: गाना बताओ।
4: हाँ बोलिए।
5: फिल्म का नाम है छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। हाँ दोस्तों का नाम बताओ।
4: हाँ बोलिए।
5: एक बसंती लाल सूर्यवंती, मध्यम मनसूजे भावेश ठाकुर, वधानी ठाकुर, धीरज रबारी, अनिल भाई देसाई, अब्दुल भाई समोसा, भावनगर।
4: आपके दोस्तों के साथ ये गाना सुनिए सूरत एफएम पर।
5: आओ जो
4: आओ जो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं को समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करांदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा और पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह से छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को मजबूत करना है। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान के वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशमदीप, मेनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गांगे, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, तमिलनाडु तथा पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में आज भी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

राम और श्याम फिल्म का दो गाना था मोहम्मद रफी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। जब याद किसी की आती है इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं, महेंद्र कपूर की आवाज है, राजा मेहदी अली खां के बोल हैं।

0: मदन मोहन का सर्वद्ध किया ये गीत आप सुन रहे थे। फिल्म थी जब याद किसी की आती है, महेंद्र कपूर की आवाज थी, राजा मेहदी अली खां के बोल थे।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे। सखी सहेली।

0: बेटा दाल माँ मीठा नहीं जगह है, खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे?
1: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए, मैं तो मिक्स थोड़ी कराई।
0: बस एवो जो कचरा नो छे, भीनो कचरो, सूको कचरो, सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केयर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इतलेज आ चार रंग याद राखजे, लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केयर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
2: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा, घरे ज कचरा नो वर्गीकरण करो, चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
3: पापा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
2: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
0: पण हवे वारो अपना शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
2: एटले?
0: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नू अभियान चाली रह्यु छे, अने एटले आपणे आपणा कचरा नू वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए, रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
2: आपनु शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।

0: शंकर जय किशन की बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफी ने। हसरत जयपुरी का लिखा ये नगमा आपने सुना फिल्म शिकार से।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: यादों की महफिल ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का स्वरबद्ध किया गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया राजा और रंग फिल्म से। आनंद बख्शी की रचना है।

बनती है हथकड़ियाँ, हाय टूटती है पायल तो बनती है हथकड़ियाँ।

0: आप सुन रहे थे इस वक्त कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: सुरीला सफर इस कार्यक्रम के लिए, बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: गुजरात वासियों, आपनी प्रकृति अने पर्यावरण ने प्लास्टिक मुक्त बनावानो समय आवी गयो छे। गुजरात सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस थी शुरू थई रही छे विशेष प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। घरे प्लास्टिक नो कचरो अलग थी एकत्र करो अने डोर टू डोर कलेक्शन वैन माज आपो।
2: याद रखो, जाहिर जग्याए, नदी नाळा के खुल्ला मा प्लास्टिक क्यारे न फेंको। प्लास्टिक ने बदले कापड़नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरह नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मा सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। गुजरात वासियों, आपनी प्रकृति अने पर्यावरण ने प्लास्टिक मुक्त बनावानो समय आवी गयो छे। गुजरात सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस थी शुरू थई रही छे विशेष प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। घरे प्लास्टिक नो कचरो अलग थी एकत्र करो अने डोर टू डोर कलेक्शन वैन माज आपो।
2: याद रखो, जाहिर जग्याए, नदी नाळा के खुल्ला मा प्लास्टिक क्यारे न फेंको। प्लास्टिक ने बदले कापड़नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरह नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मा सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मा प्रसार।
0: हर रोज सुबह 7 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वेको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: रात 10 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वेको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
0: भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। श्रोताओं, ये तो सही है कि आप जहां जहां हैं विविध भारती साथ साथ है, और साथ है सरगमी नगमों का जादू जो हमारे दिल की हर बात जानता है, कहता है और सुनता है। हमारी खुशियों, हमारी जिंदगी के सफर में शामिल इन नगमों की परवाज का क्या कहना, और उन बातों उन शिकायतों का भी क्या कहना जिनमें छुपा छुपा सा प्यार भी नजर आ रहा है, और यही बातें मिलकर बनाती हैं इस प्रोग्राम को सुरीला सफर। तो अब आज की इबारत से पहले उन श्रोताओं को बता दें जो अभी तक शामिल नहीं हो पाए हैं इस कार्यक्रम में, अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे पाए हैं, तो लॉग इन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai, और इस पते पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने कमेंट्स भेज सकते हैं। और अब आपको बता दें आज की इबारत। एक रात दस्तक दी किसी ने, दरवाजा खोला तो देखा जैसे मेरी ही शक्ल, मेरा ही हमसाया, कहने लगा मैं तुम्हारी ही यादें हूँ, रैन बसेरा चाहता हूँ, याद करो वो भोर की किरणों का पनघट पर बसेरा, इसी पनघट पर जब बातें होती थीं, एक दिन जब खो गया कहीं कान का बाला, वो सोंधी रोटी, वो खिलौने, वो रेत की नाव, वो झाग के माझी, वो काठ की रेल, वो सीप के हाथी, वो मोम के चाक जो रुके न चले, वो संगी साथी, वो जादूगर का खेल, वो पगडंडी में दौड़ना, जब तुम्हारे आने से मेरी टूटी फूटी नाव सज जाती थी, कभी तुम्हारी मुस्कुराहट को देखते कभी सोचते कि हमसे तो ये पायल ही अच्छी है, काश अपनी आंखों में बसा कर ये तस्वीर रख लूं, फिर कोई दिल तोड़ चला। सखियां भी एक एक कर ससुराल चली गईं, एक रोज डाकिया डाक लाया, पता चला ये शहर ही अब जिंदगी बन गए, और मन गांव में बस गया। शहर में कमरे ज्यादा हैं, घर बड़ा है, शायद इतना बड़ा कि कोई मिलता नहीं, शहर की इस आपाधापी में कोई पास बैठता नहीं, हाल पूछता नहीं, सुनो चलो उसी मनमोहक गांव में वापस चलें जो आज भी वैसा ही है, जिसकी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, आज का टेक्स्ट, और अब आपको शब्दों को ढूंढना है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने तो शब्द पहचान लिए हैं, बहुत सारे श्रोताओं ने गीतों के बारे में भी लिखा है, तो देखते हैं कि आज कौन से गीत शामिल होते हैं।

श्रोताओ, गांव की जो दिनचर्या होती है वो बड़ी गजब होती है। तो गांव में या अभी आपकी दिनचर्या क्या है? अगर जब कभी आप गांव में थे तो उसे किस तरह से अब के समय से आप जो है मैच कर सकते हैं कि अब शहरों में जो सोना उठना बैठना उसका समय और गांव में जो दिनचर्या होती थी वो भोर के समय, जी हाँ, पनघट पर बहुत सारी पनिहारिने नजर आ जाएंगी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन की भाग दौड़ में मन आज भी अपने गाँव, अपने बचपन और उन अनमोल रिश्तों में बसा हुआ है, जहाँ बचपन की यादें, गाँव की मिट्टी, बिछड़े साथी और पुरानी यादें आज भी दिल में घर बनाए हुए हैं। और बहुत सारे गीत भी इन्होंने बताए हैं, हमें सुझाए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि सभी को प्रणाम, तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आजादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ छपाकछई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता की नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक, इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओं, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें जरूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप जरूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ खास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद की चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है और क्या कुछ ऐसी चीज है जो आपकी गांव की यादगार चीज है।

अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप जरूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं तो हमें जरूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज़ या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो जरूर करें। और गाँव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गाँव में जो यादें हैं, रहत का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीना तमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और रिश्रोता ने लिखा, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताजी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाजें अब भी दुनिया में नहीं पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रखकर कह रही हूं अपना ध्यान रखना, वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ मिलाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट पगडंडी खेत खलिहान नदी झरने रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे, लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन, बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो

जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफर सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताजा हो गईं, और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियां, वो आंगन में सब कुछ समेटना, और रोजगार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोजगार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोजगार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं, और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भये पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था? रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीजें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है?

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे, बहुत मजा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीजें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गाँव का नाम ठोकर है। मेरे गाँव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफर है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने हैं लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताजा हो गई। मेरे गांव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गांव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था। बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगलमय शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि ये हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था। उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने 8 गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे। जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए। हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीजें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें जरूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन की जो चटपटी चीजें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक

पिच के साथ पके रहते थे, वो कागज की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज सुनते ही सभी साथी दौड़ कर वहां पहुंचकर गाना सुना करते थे।

0: किया बाबू।
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खत नहीं लिखेंगे।
1: खत नहीं लिखन, बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी कल

ये गीत आप सुन रहे थे, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोताओं, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसी उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना, यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक, और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदोद जो नर्मदा नदी पर बसा है वहां दर्शन करने गई थी। वहां नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव जरूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीजों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफर सम्पन्न होता है।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेलकूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल। थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

खेल हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की जरूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद

0: ये विविध भारती है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेव्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
2: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
3: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
3: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
4: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मैक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय
6: आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा प्रादेशिक समाचार बकुला परमार वांचे छे। દેશના અવકાશ ક્ષેત્રને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઇનસ્પેસ કેન્દ્ર સરકારના સહયોગથી ગાંધીનગરની ખોરજ GIDC ખાતે અત્યાધુનિક અવકાશ ઉત્પાદન પાર્ક વિકસાવાશે। ગુજરાતની સ્પેસ ટેક પોલિસી 2025-30ના ભાગરૂપે જાહેર કરાયેલ આ પાર્કમાં પ્રવેશ અવરોધો ઘટાડીને સ્ટાર્ટઅપ્સ અને MSME ટેકો આપવા માટે રચાયેલ અદ્યતન સામાન્ય તકનીકી સુવિધાઓ હશે। આ જાહેરાત રાજ્યના વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રી અર્જુન મોઢવાડિયા દ્વારા કેન્દ્રીય મંત્રી પિયુષ ગોયલની હાજરીમાં યોજાયેલ ઇન સ્પેસ ઇન્ડસ્ટ્રી કનેક્ટના 10મા સંસ્કરણના ઉદઘાટન પ્રસંગે કરવામાં આવી હતી। ખોરાજ ખાતે આ સુવિધા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પરીક્ષણ અને માળખાકીય સુવિધાઓ પ્રદાન કરશે। તેમાં આબોહવા પરીક્ષણ ચેમ્બર, માસ પ્રોપર્ટીઝ માપન પ્રણાલીઓ, ચુંબકીય ક્ષેત્ર પરીક્ષણ અને પૃથ્વી નિરીક્ષણ ઓપ્ટિક્સ માટે કેલિબ્રેશન સુવિધાઓ પણ હશે। ઇનસ્પેસ તકનીકી સહાય અને સાધનો માટે 100 કરોડ રૂપિયા સુધીનું નાણાકીય ભંડોળ પૂરું પાડશે, જ્યારે રાજ્ય સરકાર બાંધકામ અને સંચાલન માટે ભંડોળ આપશે। કેન્દ્રમાં નરેન્દ્ર મોદી સરકારને 12 વર્ષ પૂર્ણ થતાં ભરૂચમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રી સહિતના આગેવાનોએ સ્ટેચ્યુ પાર્કમાં સ્થાપિત મહાપુરૂષોની પ્રતિમાની સાફસફાઈ કરી હતી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો અને નાગરિકોએ હાજરી આપી હતી। આ પ્રસંગે ધારાસભ્ય રમેશ મિસ્ત્રીએ પ્રતિક્રિયા આપી।
7: સરકારને મજબૂત કરીને જન કલ્યાણના અનેકવિધ કામો આ 12 વર્ષના સમયગાળામાં નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ PM તરીકે કર્યા છે। 5 જૂન થી 21 જૂન આ 17 દિવસ સુધી વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમોના માધ્યમથી 12 વર્ષમાં સરકારે કરેલા કામોનો હિસાબ એ પ્રજા સુધી આપવાનો આ અભિયાન છે। એના ભાગરૂપે આજે અહીંયા સ્ટેચ્યુ પાર્ક ખાતે મહાપુરુષોની પ્રતિમાની સફાઈનો કાર્યક્રમ ભારતીય જનતા પાર્ટીના શહેરના અને જિલ્લાના આગેવાનોની હાજરીમાં કરવામાં આવે છે। ખૂબ સુંદર વાતાવરણમાં કાર્યક્રમ સંપન્ન થયો છે।
6: રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ તેમજ પ્રવાસન રાજ્યમંત્રી ડોક્ટર જયરામ ગામિતની ઉપસ્થિતિમાં નવસારી જિલ્લાના ઉનાઈ માતા મંદિરે, જ્યારે સુરેન્દ્રનગરના BAPS મંદિર ખાતે મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ડાંગ જિલ્લાના આહવા ખાતે નાયબ મુખ્ય દંડક વિજય પટેલની ઉપસ્થિતિમાં સ્વચ્છતા અભિયાન હાથ ધરાયું હતું। પોલીસ કમિશનરથી લઈને PI સુધીના અધિકારીઓને દરરોજ 2 કલાક ફરજિયાત નાગરિકોને જ સાંભળવા રાજ્યના પોલીસ વડા GS મલિકે આદેશ કર્યો છે। સ્થાનિક કક્ષાએ અરજદારોને સાંભળીને મહત્તમ 15 દિવસમાં ફરિયાદનો નિકાલ લાવવા પણ સૂચના અપાઈ છે। આ નવીન વ્યવસ્થા અંતર્ગત ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓએ દરરોજ 12 થી 2 વાગ્યા સુધી ફરજિયાત પોતાની કચેરીમાં હાજર રહી મુલાકાતીઓને સાંભળવાના રહેશે અને તેમની લેખિત અરજી પર જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની રહેશે। સ્થાનિક સ્તરે પ્રજા સાથે સીધા જોડાયેલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોએ દરરોજ સાંજે 4 થી 6 વાગ્યા સુધી પોતાના પોલીસ સ્ટેશનમાં અચૂક હાજર રહીને મુલાકાતીઓને રૂબરૂ મળવાનું રહેશે। તેઓએ સ્થાનિક નાગરિકોની રજૂઆતો શાંતિપૂર્વક સાંભળી લેખિત અરજી સ્વીકારીને તેના પર તાત્કાલિક કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની રહેશે, જેથી કોઈપણ સામાન્ય નાગરિકને પોતાના પ્રશ્નના ઉકેલ માટે ઉપરની કચેરીઓ સુધી જવાની જરૂર જ ન પડે। રાજ્યમાં 1 મહિનાની રાજ્યવ્યાપી હેલ્મેટ ઝુંબેશ અંતર્ગત હેલ્મેટ નિયમ ભંગ કરનાર 5,123 સરકારી અધિકારી કર્મચારીઓ પાસેથી 16,58,000 રૂપિયાનો દંડ વસૂલાયો છે। રાજ્યભરમાં નિયમ ભંગ કરનાર કુલ 1,88,000થી વધુ વાહન ચાલકો સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરીને 5,21,00,000 રૂપિયાનો દંડ કરાયો છે। ઉલ્લેખનીય છે કે માર્ગ અકસ્માતોમાં અમૂલ્ય જીવન બચાવવા અને નાગરિકોમાં ટ્રાફિક સભ્યતા કેળવવા માટે સમગ્ર રાજ્યમાં 1 થી 31 મે દરમિયાન 1 મહિનાની વિશેષ હેલ્મેટ ડ્રાઇવ યોજવામાં આવી હતી। મહીસાગર જિલ્લાના કડાણાના રાઠડા બેટ વિસ્તારમાં નવો બ્રિજ બનશે, જેનાથી વર્ષોથી બેટ વિસ્તારમાં અને ચારે તરફ પાણીમાં રહેતા લોકોની તકલીફોનો અંત આવશે। સંતરામપુરના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ શિક્ષણ મંત્રી ડોક્ટર કુબેર ડિંડોરના પ્રયાસોથી 32 કરોડના ખર્ચે બ્રિજનું નિર્માણ થશે, જેનાથી 1100 પરિવારને લાભ મળશે તેમ શ્રી ડિંડોરે જણાવ્યું હતું.
8: અવર જવર માટેનો જે બ્રિજ નહોતો એ રાજ્ય સરકારમાં એની રજૂઆત કરીને આપણે મંજૂર કરાવ્યો અને કામ એનું ચાલુ થયું. આજે એના પ્રગતિ પથ અંતર્ગત અમે કામને આ કામ જે ચાલી રહ્યું છે જે અત્યારે બે જેને તૈયાર કર્યા છે અમારા એજન્સી વાળા એને આ સ્થળ મુલાકાત માટે અમારી પૂરી સંગઠનની ટીમ અમારા એના સામાજિક આગેવાનો અમારા કાર્યકર્તાઓ અમારી માતા બહેનો અધિકારી મિત્રો બધા આજે આ સ્થળની મુલાકાત માટે આવ્યા છે. રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારનો આભાર માનું છું કે અમારા આવા પછાત વિસ્તારમાં આ બે ક્વોટર તો ત્યાં આટલા વર્ષો પછી આ માધબર રકમ લગભગ આપણા અંદાજિત જે છે 32 કરોડ જેટલી રકમ આ બ્રિજ માટે આપી છે.
6: સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલની ટીમે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા હાઇવે પર નાની મોલડી નજીક કેમિકલ ચોરીનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જેમાં ટેન્કર સહિત 2 વાહનો, 8,330 કિલો કેમિકલ, 2 મોબાઈલ સહિત કુલ 45,98,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે. આ મામલે 2 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે અન્ય 3 શખ્સની શોધખોળ હાથ ધરાઈ છે. ભાવનગર શહેરમાં સાયબર છેતરપિંડીનો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. વિજયરાજનગર વિસ્તારમાં રહેતા એક વેપારીના વોટ્સએપ પર લિંક મોકલી આરોપીઓએ 4 અલગ અલગ બેંક ખાતાઓમાંથી કુલ 7,87,000થી વધુ રૂપિયા ઉપાડી લીધા છે. જે અંગેની ફરિયાદ ભાવનગર સાયબર ક્રાઇમ વિભાગમાં નોંધાતા પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ સમાચાર આપ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી સાંભળી રહ્યા હતા. આ સમાચારનું જીવંત પ્રસારણ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ AIR ન્યૂઝ ગુજરાત પર પણ સાંભળી શકશો. વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ newsonair.gov.in/gu અને અમારા એક્સ હેન્ડલ AIR News_ABD ફોલો કરશો. આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી પ્રાદેશિક સમાચાર પૂરા થયા. હવે પછી આપ સાંજે 7:10 પ્રાદેશિક સમાચાર સાંભળી શકશો.
9: છેલ્લા 12 વર્ષથી અહીં વિકાસના સંકલ્પો કદી અટકતા નથી, પુરુષાર્થની ગાથાઓ ક્યારેય ખૂટતી નથી. આ યાત્રા છેલ્લા 12 વર્ષથી વિકાસને સમર્પિત યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની. 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના. આ સફળ છે માં નર્મદાથી જળ સમૃદ્ધ થતી ધરાની, સ્માર્ટ સિટીઝથી દુનિયામાં ચમકતી આધુનિકતાની, બુલેટ ટ્રેન અને વંદે ભારતની ગતિશીલતાથી લખાતા એક નવા ભવિષ્યની અને ગગનામતા ભારતના આત્મવિશ્વાસની. 12 વર્ષની આ યાત્રા છે ગુજરાતમાં અંત્યોદય અને ગરીબ કલ્યાણ, સેવા અને સુશાસન, પીએમ આવાસ, હર ઘર જળ, કિસાન સન્માન અને આયુષ્યમાન કવચથી મજબૂત થતા જન જનના આત્મવિશ્વાસની, અને હવે તો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના પ્રયાસોથી દેશનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત બની રહ્યું છે ગ્રીન એનર્જી અને ભવિષ્યની આધુનિક ટેકનોલોજીનું પાવર હાઉસ. આવો આ વિકાસના મહાયજ્ઞને વધુ વેગવંતો બનાવીએ, વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ. 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના.
10: ગુજરાતવાસીઓ, આપણી પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણને પ્લાસ્ટિક મુક્ત બનાવવાનો સમય આવી ગયો છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા 5 જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસથી શરૂ થઈ રહી છે વિશેષ પ્લાસ્ટિક કલેક્શન ડ્રાઈવ. ઘરે પ્લાસ્ટિકનો કચરો અલગથી એકત્ર કરો અને ડોર ટુ ડોર કલેક્શન વેનમાં જ આપો.
11: યાદ રાખો, જાહેર જગ્યાએ, નદી નાળા કે ખુલ્લામાં પ્લાસ્ટિક ક્યારેય ન ફેંકો. પ્લાસ્ટિકને બદલે કાપડની થેલી, સ્ટીલની બોટલ વગેરેનો ઉપયોગ કરો.
10: આવો આ પ્લાસ્ટિક કલેક્શન ડ્રાઈવમાં સહભાગી બની સ્વચ્છ અને પ્લાસ્ટિક મુક્ત ગુજરાત બનાવીએ. ગુજરાતવાસીઓ, આપણી પ્રકૃતિ અને પર્યાવરણને પ્લાસ્ટિક મુક્ત બનાવવાનો સમય આવી ગયો છે. ગુજરાત સરકાર દ્વારા 5 જૂન વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસથી શરૂ થઈ રહી છે વિશેષ પ્લાસ્ટિક કલેક્શન ડ્રાઈવ. ઘરે પ્લાસ્ટિકનો કચરો અલગથી એકત્ર કરો અને ડોર ટુ ડોર કલેક્શન વેનમાં જ આપો.
11: યાદ રાખો, જાહેર જગ્યાએ, નદી નાળા કે ખુલ્લામાં પ્લાસ્ટિક ક્યારેય ન ફેંકો. પ્લાસ્ટિકને બદલે કાપડની થેલી, સ્ટીલની બોટલ વગેરેનો ઉપયોગ કરો.
10: આવો આ પ્લાસ્ટિક કલેક્શન ડ્રાઈવમાં સહભાગી બની સ્વચ્છ અને પ્લાસ્ટિક મુક્ત ગુજરાત બનાવીએ. સ્વચ્છ ભારત મિશન અર્બન ગુજરાત દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત.
12: અરે ભાઈ, તે આ સાંભળ્યું? આપણે દરિયામાં હોઈએ તો આ ઇન્ટરસેપ્ટર બોટ આપણી અને દેશની રક્ષા કરે છે.
13: ગુજરાત રાજ્યના દરિયા કિનારે કુલ 27 ઇન્ટરસેપ્ટર બોટ આપણી સુરક્ષા માટે દરિયામાં સતત પેટ્રોલિંગ કરે છે, અને આપણે પણ તપાસ દરમિયાન જરૂરી દસ્તાવેજો અને સાચી માહિતી આપી તેમને સંપૂર્ણ સહકાર કરવો જોઈએ. આપણને દરિયામાં કે કિનારે અજાણી બોટ, વ્યક્તિ કે શંકાસ્પદ હિલચાલ દેખાય તો તરત જ 1093 પર કોલ કરી મરીન પોલીસને જાણ કરવી જોઈએ. આપની સજાગતા અને તકેદારી આપે દરિયાઈ સુરક્ષાની ખાતરી. ગુજરાત મરીન પોલીસ.
14: द्वारा जनहितमा प्रसारित।
15: रात 10 बजे सुनना न भूले कार्यक्रम छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
16: कीजिए सूरत एफएम के साथ अपने दिल की बात।

रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन कीजिए हर रविवार सुबह 9 से 1 बजे तक। हमारा फ़ोन नंबर 02612236209। सुनिए अपने पसंदीदा फिल्मी गाने हर रोज सुबह 10 से 11 बजे तक।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षमत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। मोहम्मद रफी सुमन कल्याणपुर के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म थी आधी रात के बाद।
1: बेटा दाल माँ मीठा नी जगह है खांड पड़ी जाए तो क्यों लागे।
2: अरे मम्मी आँखों स्वाद बगड़ी जाए
1: मैं तो मिक्स थोड़ी कराई। बस एवो जो कचरा नो छे भीनो कचरो सूको कचरो सैनिटरी वेस्ट अने स्पेशल केर क्यारे मिक्स ना कराई। अने इतले ज आ चार रंग याद राखजे। लीलो डब्बो भीना कचरा माटे, वादड़ी सूका कचरा माटे, लाल सैनिटरी वेस्ट माटे अने स्पेशल केर माटे कालो रंग छे ने एकदम सिंपल।
3: गुजरात ना शहरों ने स्वच्छ राखवा घरे ज कचरा नु वर्गीकरण करो। चार कचरा पेटी नो नियम अपनावो अने कचरा ना कलेक्शन नी गाड़ी मां ज कचरो आपो।
4: पापा मम्मी जुवो मारो रिपोर्ट कार्ड, हूँ क्लास मां फर्स्ट आवी।
5: वाह एकदम फर्स्ट क्लास।
1: पण हवे वारो आपणा शहर ना रिपोर्ट कार्ड नो छे।
5: एटले
1: अरे स्वच्छ सर्वेक्षण चाले छे ने, आखा देश मां सफाई नु अभियान चाली रह्यु छे अने एटले आपणे आपणा कचरा नु वर्गीकरण करिए अने कचरो कचरा पेटी मां ज नाखीए। रिड्यूस रीयूज अने रिसाइकल नी आदत पाड़िए अने सिटीजन फीडबैक आपीने आपणा शहर ने फर्स्ट लावीए।
3: आपनु शहर स्वच्छ शहर। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां जारी।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिल की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

0: ಹೇಳಿ.
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सहेलियों को और आरती आपको नमस्कार.
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार.
1: तो

0: आज हम आ चुके हैं और बहुत सारे विषय लेकर आए हैं, बहुत सारी मस्ती, कुछ अच्छे अच्छे गीत
1: जी
0: सब लेकर
1: बिल्कुल।
0: आए हैं।
1: तो
0: और
1: आज हम
0: देखिए,
1: जो
0: खेल खेल में सारी बातें हो जाएंगी क्योंकि आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस,
1: बिल्कुल, और ये खेल दिवस किनका है?
0: छोटे
1: बच्चों
0: बच्चों
1: का।
0: का।
1: हाँ, बच्चों का
0: हाँ,
1: खेल दिवस है, तो आज बच्चों के लिए भी है ना। तो
0: बचपन के जो खेल होते हैं, आपने कौन कौन से खेल खेले, या जो खेल माता पिता ने खेले वही खेलना आपको पसंद है? इंडोर गेम ज्यादा गेम खेलते हैं या आउटडोर ज्यादा करते हैं, मतलब घर में रहकर घर से बाहर?
1: जी
0: या
1: बिल्कुल।
0: माता पिता हैं किस तरह से बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इस बारे में अपनी
1: बिल्कुल,
0: बातें वो जरूर
1: क्योंकि
0: बताएं।
1: आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बाहर खेलने पे जरा कम ध्यान देते हैं, मोबाइल वगैरह में ज्यादा ध्यान देते
0: जी
1: हैं। तो क्या आप भी मतलब बच्चों को कहते हैं कि आप बाहर जाके खेलिए, या फिर आप भी उनके साथ मोबाइल में लग जाते
0: तो इस
1: हैं?
0: बारे में बहुत सारी बातें और होंगी, और आज होगी कहानी पद्मश्री की। इसमें किस सखी की बात होगी बताइए।
1: भीमव्वा डोड्डाबलप्पा शिलेक्या थारा, जो कि पारंपरिक छाया कठपुतली कलाकार हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: बिल्कुल, और कठपुतली का खेल देखना भी बच्चों को बड़ा पसंद होता है।
1: बड़ों को भी अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है।
0: और मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे खुश रहना या खुश रहने का दिखावा करना, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि हम खुश हैं या नहीं, लेकिन सामने आते ही जब अगर कोई फोटो खींचना होता है तो हमारे चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, या फेसबुक पर मीडिया पर हम कोई भी पोस्ट जब हम अपलोड करते हैं तो वहां जब डालते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि हम कितना अच्छी
1: कितने
0: जिंदगी जी
1: खुश
0: रहे
1: हैं।
0: हैं या कितने खुश हैं। तो खुश रहने से ज्यादा खुशी का दिखावा करना, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही
1: बिल्कुल।
0: हैं।
1: तो आपके इस पे क्या विचार है कि मतलब खुश रहना जरूरी है, चाहे वो कम में ही क्यों ना हो,
0: जी
1: या फिर दिखावा ज्यादा जरूरी लगता है आपको, कि लोगों के इसमें ध्यान में आपकी कैसी इमेज बन रही है?
0: जी
1: तो इस पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही हम बताएंगे कुछ टिप्स आपको, कान की किस तरह से सुरक्षा करके रखें आप, ध्यान रखें आप।
0: क्योंकि भाई आपको अगर रेडियो सुनते रहना है तो आपके कानों का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, तभी तो बहुत सारी अच्छी अच्छी मनोरंजक जानकारी या
1: बिल्कुल
0: फिर अच्छे अच्छे गीत आप सुन पाएंगे।
1: जी हाँ,
0: चलिए।
1: जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं प्यारा सा गीत।

0: ઓલા ચીમનની વાત સાંભળીને
1: માછીમારી કરતા એને દરિયામાં બેનામી નશીલા પદાર્થોની જાણ તુરત જ મરીન પોલીસને કરી દીધી.
0: ગાંજો, અફીણ, કોકેન, એમડીએમએ જેવા નશીલા પદાર્થોની હેરાફેરી કરવાના ગુનાઓમાં એનડીપીએસ એક્ટ હેઠળ ગુનેગાર વ્યક્તિ સામે કડક કાર્યવાહી અને ધરપકડ થઈ શકે છે. અને આપણને કોઈને પણ દરિયામાં કોઈ શંકાસ્પદ બોટ, વિદેશી કે અજાણી વ્યક્તિ કે બેનામી ડ્રગ્સ નજરે ચડે તો ચીમનની જેમ તરત જ ગુજરાત મરીન પોલીસને 1093 પર જાણ કરવી. આપની સજાગતા અને તકેદારી આપે દરિયાઈ સુરક્ષાની ખાતરી. ગુજરાત મરીન પોલીસ દ્વારા જનહિતમાં પ્રસારિત.
2: છેલ્લા 12 વર્ષથી અહીં વિકાસના સંકલ્પો કદી અટકતા નથી, પુરુષાર્થની ગાથાઓ ક્યારેય ખૂટતી નથી. આ યાત્રા છે છેલ્લા 12 વર્ષથી વિકાસને સમર્પિત યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની. 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના. આ સફર છે માં નર્મદાથી જળ સમૃદ્ધ થતી ધરાની, સ્માર્ટ સિટીઝથી દુનિયામાં ચમકતી આધુનિકતાની, બુલેટ ટ્રેન અને વંદે ભારતની ગતિશીલતાથી લખાતા એક નવા ભવિષ્યની અને ગગનામતા ભારતના આત્મવિશ્વાસની. 12 વર્ષની આ યાત્રા છે ગુજરાતમાં અંત્યોદય અને ગરીબ કલ્યાણની, સેવા અને સુશાસનની, પીએમ આવાસ, હર ઘર જળ, કિસાન સન્માન અને આયુષ્યમાન કવચથી મજબૂત થતા જન જનના આત્મવિશ્વાસની. અને હવે તો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના પ્રયાસોથી દેશનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત બની રહ્યું છે ગ્રીન એનર્જી અને ભવિષ્યની આધુનિક ટેકનોલોજીનું પાવર હાઉસ. આવો આ વિકાસના મહાયજ્ઞને વધુ વેગવંતો બનાવીએ, વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ. 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના.
3: कर्नाटक की एक पारंपरिक छाया कठपुतली कला भी है और इस प्रदर्शन शैली में चमड़े की कठपुतलियों का उपयोग पौराणिक कथाओं से लेकर और अभी लोक कथाओं तक सुनाने के लिए किया जाता है कि कहानी जब हम सुना रहे हैं तो उनको पात्र बनाया जाता है, उस माध्यम से उन कहानी को अच्छे से समझाया जा सके.
4: बिल्कुल, जैसे कि कुछ कला का जैसे मंचन किया जाता है ना,
3: हाँ,
4: उस तरीके से उस कठपुतली के जरिए मंचन किया जाता है. तो एक छोटी सी बच्ची के रूप में अपने सफर की शुरुआत करते हुए उन्होंने चमड़े की कठपुतली कला में पूरा ध्यान लगाया और रामायण, महाभारत और अन्य पौराणिक कथाओं को सुनाने के लिए कठपुतलियों को बनाने और उन्हें चलाने की कला में महारत हासिल की.
3: जैसे राजस्थान में भी कठपुतलियां बहुत बनती हैं तो वहां लकड़ी की कठपुतलियां बनाई जाती हैं. और जब हम आज जिनकी बात कर रहे हैं, इन्होंने चमड़े की कठपुतलियों के साथ में वो प्रयोग किए.
4: बिल्कुल, और दशकों तक उन्होंने अपनी कला को कस्बों और गांवों तक पहुंचाया जहां उन्होंने कहानी, संगीत और जटिल शिल्प कौशल को मिलाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया. लगभग 8 दशकों से भीमव्वा का नाम तोगलू गोम्बेता के पर्याय के रूप में जाना जाता है
3: और उनके जो प्रदर्शन होते हैं वो पौराणिक कथाओं, संगीत और भावपूर्ण कठपुतली आंदोलनों के मिश्रण के लिए जाने जाते हैं आरती. और बहुत दर्शकों जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने के साथ साथ जो वहाँ के लोक परंपराएं हैं उसके साथ में एक जुड़ाव भी महसूस करवाते हैं.
4: बिल्कुल, और सीमित संसाधनों और घटती लोकप्रियता के बावजूद भीमव्वा ने गाँव और कस्बों में व्यापक यात्राएं की और पारंपरिक कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी.
3: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सके, ताकि जो तोगलू गोम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी जरूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सके.
4: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है. उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है
3: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है. और उनके दर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहां के उत्सव हैं, त्योहार हैं, जो भी परंपरा है उनसे जुड़े हुए होते हैं.
4: बिल्कुल,
3: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है.
4: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाजें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें. और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला

0: टोगलू गोमेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले के अथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
1: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
0: जी,
1: और एक गीत सुन ले अभी।
0: जी बिल्कुल।

0: उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत, और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने की, खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल, और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज़्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज़्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना
1: वो जिस
0: बहुत
1: तरीके
0: जरूरी
1: खेल
0: है।
1: में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए।
0: जी।
1: और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांधकर झूलना, सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीज़ें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जानें, पहचानें और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना ज़रूरी है। और खेल दिवस जैसे आयोजन ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं, और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री हो ये भी ज़रूरी नहीं है, जैसे बचपन में जो हमने खेल खेले हैं या हमारे बहुत सारे सुनने वालों ने भी खेले होंगे,
1: दौड़ भाग है, साइकिल चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम खेल के अपने को स्वस्थ रख सकते हैं।
0: लुका छिपी भी
1: खेलते थे,
0: और बस पत्थरों से कुछ टुकड़े जमा के सतोलिया बना के खेला, और कपड़े की, पुराने कपड़े की गेंद बना ली, उससे मार कर खेल रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत से ऐसे खेल हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं। और जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है। तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से हो नहीं पाता पूरे शरीर के अंदर, तो उसकी वजह से ना बच्चों का विकास बहुत ज्यादा अवरुद्ध भी होता है, और पूरे समय वो स्क्रीन पे लगे रहते हैं, उसे आंखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है बाहर निकलना, बाहर निकलकर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर से यूनिसेफ और यूनेस्को खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इस दिन का आयोजन करते हैं, ताकि ये जो खेल की जो प्रक्रिया है बच्चों में चलती रहे। और हम एक गीत सुन लें, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे।

0: बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में
1: और
0: बड़ी
1: मजा आता
0: रुचि
1: है।
0: रहती है। तो देखियो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो दिन है ये बताता है कि हमारे जीवन में खेल कितना जरूरी है। और हमारी ये श्रोता जो है वो कहना चाहती हैं कि अगर कोई बच्चा खेल की तरफ रुचि रहता है लेता है तो ये बिल्कुल मत सोचे कि खेल में कोई करियर है या नहीं है, बस खेलने के लिए उसको प्रेरित करना है। और आगे लिख रही हैं कि खेल हर चीज में हमें जीने का तरीका सिखाता है, इसीलिए सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं। और खेल हार जीत में कैसे उभरना है इसका तरीका भी हमें सिखाता है, और इस बात का भी हमें हमेशा ध्यान रखना होगा।
1: बिल्कुल। और हमारी श्रोताएं जो लिखती हैं कि मेरे विचार से खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खेलों से शारीरिक मानसिक विकास होता है और हम सोशल मीडिया और मोबाइल से कुछ समय के लिए दूर रह पाते हैं। और मेरा मानना है कि बच्चों के साथ खेलने के लिए यदि हमें अपने व्यस्त समय में से थोड़ा वक्त निकालना पड़े तो जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ खेलते खेलते हम भी अपना बचपन फिर से जी लेते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने,
0: हम भी और
1: बचपन
0: इस
1: भूल
0: साल
1: जाते हैं।
0: जब ये खेल दिवस हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, तो इसका विषय है खेल की रक्षा करें, बचपन की रक्षा करें। और ये विषय हम सभी को और मतलब जो भी स्कूल हैं, परिवार हैं, व्यवसाय हैं, उनको ये याद दिलाता है कि खुशहाल और स्वस्थ बचपन खेल पर ही आधारित होते हैं। और खेल
1: बिल्कुल
0: खेल में बच्चों को बहुत सारी चीजें दिखाई समझाई भी जा सकती है ना।
1: बिल्कुल, खेलते खेलते आप उनको पढ़ा भी सकते हैं,
0: जी
1: बहुत सी ऐसी तरीके की चीजें आप कर सकते हैं, ताकि आप उनको खेलने, अगर थोड़े समय भी वो मोबाइल से दूर रहेंगे ना तो ये बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे वो सीखेंगे।
0: बिल्कुल, रचनात्मकता, लचीलापन, सामाजिक कौशल, ये सारी चीजें बच्चों में विकसित करते हैं खेल। और जीवन भर सीखने की जो खुशहाल जीवन की नींव है इसे भी वो रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: और बहुत सारी जगहों पर बच्चों के लिए स्वतंत्र और अनौपचारिक खेल के जो अवसर हैं वो कम हो रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक स्थान है वो कम है, अगर कहीं है तो वो सुरक्षित नहीं है,
1: सुरक्षित
0: हर बार बच्चे के साथ कोई जाए ये जरूरी नहीं हो पाता। तो माँ बाप भी ये चाहते हैं कि बच्चा घर पर ही खेले, तो ये सुरक्षा भी अगर बच्चों के लिए दी जाए, एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों
1: बिल्कुल
0: का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते ही किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीजें खेल के जरिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत
0: अभी
1: कुछ
0: जैसे बारिश
1: सीख
0: का जब
1: सकते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले की, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको थोड़ा सिखाते हैं झूला
1: हाँ
0: कैसे जाता है, उनके साथ बैठ कर, उनके साथ खड़े होकर, तो झूलना भी एक खेल हो गया। तो इस तरह से आप साथ लेकर कैसे चलेंगे ये भावना
1: बिल्कुल
0: विकसित होती है।
1: बिल्कुल।

0: और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पर यही कहना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में खेल का बहुत बड़ा महत्व है। खेल से मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जब हम खेलते हैं तो सोशल मीडिया से हमारी दूरी बनी रहती है और स्वास्थ्य के लिए हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है।
1: और जब बात खेलने की आती है तो हमें किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस का इंतजार ही क्यों करना है।
0: बिल्कुल,
1: हम जो भी हमारे मस्ती भरे पल हैं उन अवसरों की तलाश करें और हल्की फुल्की जो गतिविधियां होती हैं हमारी हम उन्हें भी खेल में बदल सकते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: और हमें रोज ही कम से कम इतना समय निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी इतना समय निकालना चाहिए कि उनके साथ हम खेल सकें, ना कि हम मोबाइल पे या उनके साथ में कुछ इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं बैठे हुए मोबाइल पे देख रहे हैं या हम टीवी में लगे हुए हैं या मूवी देख रहे हैं। ये सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन एक इतना समय जरूर होना चाहिए हर दिन कि बच्चों के साथ बाहर खेला जाए। जो बाहर आप खेलते हैं ना उससे वो पूरी तरह से एक्टिव होते हैं, उनका पूरा शरीर एक्टिव होता है, तो वो उससे उनके उनका विकास होता है, उनका दिमागी विकास बहुत अच्छा होता है, शारीरिक विकास बहुत अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, जब बच्चों को धूप में जाने से रोकना है, बारिश में भीगने से रोकना है, ऐसा कोई मौसम की अगर समस्या है जब बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उस वक्त आप उन्हें चाहे कार्टून देखने में व्यस्त करिए या घर में कोई इंडोर गेम खिलवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो बच्चों के विकास की हम बात कर रहे हैं वो बाहर खेलने से ही होता
0: बिल्कुल
1: है।
0: और थोड़ा बहुत भीग जाना भी जरूरी होता है कभी कभी।
1: भाई बारिश में नाव चलाना एक बड़ा अच्छा खेल होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो चलो गाना सुने।

0: છેલ્લા 12 વર્ષથી વિકાસને સમર્પિત યશસ્વી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વની 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના. આ સફળ છે માં નર્મદાથી જળ સમૃદ્ધ થતી ધરાની, સ્માર્ટ સિટીઝથી દુનિયામાં ચમકતી આધુનિકતાની, બુલેટ ટ્રેન અને વંદે ભારતની ગતિશીલતાથી લખાતા એક નવા ભવિષ્યની અને ગગનામતા ભારતના આત્મવિશ્વાસની. 12 વર્ષની આ યાત્રા છે ગુજરાતમાં અંત્યોદય અને ગરીબ કલ્યાણની, સેવા અને સુશાસનની, પીએમ આવાસ, હર ઘર જળ, કિસાન સન્માન અને આયુષ્યમાન કવચથી મજબૂત થતા જન જનના આત્મવિશ્વાસની, અને હવે તો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના પ્રયાસોથી દેશનું ગ્રોથ એન્જિન ગુજરાત બની રહ્યું છે ગ્રીન એનર્જી અને ભવિષ્યની આધુનિક ટેકનોલોજીનું પાવર હાઉસ. આવો આ વિકાસના મહાયજ્ઞને વધુ વેગવંતો બનાવીએ, વિકસિત ભારત માટે વિકસિત ગુજરાત બનાવીએ. 12 વર્ષ વિશ્વાસના, વિકાસના, જનકલ્યાણના.
1: સચ્ચી ખુશી આપ ચાહતે હૈ અપને જીવન મેં તો ક્યા કરના, જો લાઇક્સ ઓર ફોલોઅર્સ હૈ યે દિખાવે સે નહીં આતી. આજકલ ઇસી કે પીછે બસ સબ ભાગ રહે હૈ કે અગર હમને કોઈ પોસ્ટ ડાલી હૈ, કોઈ પિક્ચર હૈ, કોઈ વિડિયો હૈ જિસમે હમ નજર આ રહે હોતે હૈ તો વહાં હમે બહોત સારે એક લાઇક મિલે.
2: બસ આપ ક્યા કરતે હૈ ના, થોડી થોડી દેર મેં દેખતે રહેતે હૈ કિતને કિતને લાઇક્સ હો ગયે,
1: વો લાઇક કમેન્ટ બઢ ગયે, હા
2: વો ઉસી દેખ મેં લગે રહેતે હૈ.
1: और बस इसी से हम है ना, तो ये अच्छे रिश्ते और आत्मसंतोष, स्वस्थ जीवन शैली और अपने काम में आनंद खोजने से मिलती है, इन चीजों से नहीं मिलती. ये चीज हमें समझनी है आरती. और व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है, अपनी खुशी का प्रमाण दुनिया को दिखाने की हमें जरूरत ही नहीं. क्यों हम सबूत दिखाएं कि हम खुश हैं? इस बात की हमें दिखावा करना ही क्यों है? बल्कि हमें ये समझना है कि कोई जीवन में प्रदर्शन नहीं चाहिए, बस जो वो अंदर हमारी खुशी है वो सबसे जरूरी है.
2: बिल्कुल. और सच्ची खुशी किसी भी दिखावे की तो मोहताज होती नहीं है कि हमें दिखाना पड़े कि हम खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं, कब हम रो रहे हैं. एक एक चीज को उस पर डालने की जरूरत भी नहीं है. तो वो चीजें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में. हम बहुत बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना कि चलो ये त्यौहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. तो अभी क्यों नहीं खुश हो जाते? तो हर जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतजार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में आए.
1: और जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती. ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे मिलेंगे तब खुश, यहां जाएंगे तब खुश होंगे, ये आएगा तब खुश होंगे. ये तो सिर्फ एक बहाने हैं, लेकिन वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप बता रहे हैं.
2: जीवन है कोई ऐसा मंच नहीं है कि हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए. भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नजर से नहीं जीना, हमें अपनी नजर से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है.
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना चेहरे की आदत है. दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हम अपने लिए जीते हैं और दूसरे में दुनिया के लिए जीते हैं. जब हम असल खुशी में होते हैं तब मन को एक सुकून और संतुष्टि होती है, लेकिन जब खुश होने का हम दिखावा करते हैं तो चेहरा तो मुस्कुराता है पर कंधे थके हुए होते हैं. दिन भर लोगों को दिखाते हैं कि सब ठीक है, पर रात को हम तकिया भी खोते हैं. कभी कभी गिरकर संभलने में थोड़ा दिखावा ही सहारा बनता है, पर दिखावा ही अगर जिंदगी बन जाए तो अंदर का जो बच्चा है वो मर जाता है, जो सच में हंसता था. लेकिन दिखावा वहीं तक सही है जहां तक खुद से झूठ ना बोलना पड़े. ये इतना प्यारा संदेश है और हम श्रोता ने जिसने भी लिखकर भेजा उसे बहुत धन्यवाद देते हैं.
2: बिल्कुल. और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है. ऐसा ही कुछ हम सबके साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है. क्या करें, लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता. खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की, क्योंकि मन से किए गए काम खुश करते हैं.
1: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा ये प्यारा सा गाना.

0: बात कही है इन्होंने।
1: और भी संदेश हैं।
0: तो एक और जो हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसकी पोषक भी है, फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं।
1: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं, कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत।

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने के, खुश रहने के बारे में और उसका दिखावा करने के बारे में। एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को। जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है। दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है। इसीलिए खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो।
1: बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने। और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए। खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते। दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हम

0: हमारे श्रोताओं, हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।
1: बिल्कुल सही बात है। और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे। और
0: जी
1: जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है,
0: बहुत जरूरी
1: और
0: है।
1: इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है। इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है।
0: बहुत जरूरी है। और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीली, जैसे अक्सर हम ना
1: हाँ,
0: कुछ नहीं तो अरे कान में खुजली हो रही थी बस माचिस की तीली लेके करने लगे, तो वो बहुत खतरनाक
1: और
0: चीज होती
1: महिलाएं
0: है।
1: हेयर पिन घुमाती जिस
0: हाँ, हेयर
1: तरह
0: पिन, चाबी लेता, कोई कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीजों को यूज नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज आवाज आ रही हो जहां पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना
1: जी
0: जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा हम अगर में शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचाएगा।
1: देखो, जिस तरह से आंखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आंखों में जो नमी है वो अपने आप आंख उसे निकालकर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है, और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं। इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है। कई बार उसे जबरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं। तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है, तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीजें,
0: बल्कि हम
1: हेयर
0: कहेंगे
1: पिन,
0: कि आप
1: इनका तो
0: को
1: कभी
0: बिल्कुल
1: ना
0: आप
1: करें।
0: इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करिए, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना, जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके या जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बड्स, उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए, और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए,
1: जी
0: और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे
1: जी
0: एक आवाज ही आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही।
1: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से, बात करने से, मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है, तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में, तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही। एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है, तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है,
0: बिल्कुल
1: तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम
0: बिल्कुल।
1: करना
0: और
1: है।
0: सबसे बड़ी चीज है, आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत जरूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50, उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज को कि आपको बाकी आवाजें ना आए। और दूसरी चीज, अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं, एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना, एक कान में लगा लिया, थोड़ी देर बाद आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पर उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो खराब नहीं होगा। और साथ ही अगर आपकी बहुत ज्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास चाहिए, कृपया करके अपने आप कोई दवाई मत करिए। कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीजें, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज से उसकी जांच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जांच होती है वो भी जरूर करवाइए।
1: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: से तो प्यार।
1: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
2: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार
1: सखी सहेली। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. पूरा दिन काम करने के लिए आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा के लिए नाश्ते से बेहतर और कुछ नहीं, इसलिए नाश्ते को दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन माना जाता है। दरअसल रात के खाने के बाद हम काफी लंबे समय तक कुछ नहीं खाते, ऐसे में सुबह का नाश्ता पौष्टिक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। खाली पेट बनता है एसिड। हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा तो खाली पेट रहने से पेट में जो पाचन रस उत्पन्न होते हैं उनसे एसिड बनने लगते हैं। इससे एसिड से हमारी अंतों को तो नुकसान पहुंचता है, साथ ही हम कमजोर भी होने लगते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो नाश्ता न करने का अर्थ है शरीर को पर्याप्त ऊर्जा न मिलना।

0: दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039। और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।
1: अगर नाश्ता नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद खाने की इच्छा होती है और फिर हम पूरे दिन कुछ न कुछ खाते ही रहते हैं। ऐसे में हम भूख मिटाने के चक्कर में हम अनहेल्दी फूड लेने लगते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का वह ईंधन है जिससे हमारा शरीर ठीक से काम करता है। विभिन्न कार्यों का करने के लिए मस्तिष्क और स्नायु तंत्रों को इस ईंधन की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति न होने पर बॉडी अनहेल्दी फूड खाने लगता है। इस तरह से अगर आप सुबह का नाश्ता नहीं लेते हैं तो इसका असर आपके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। मेटाबॉलिज्म वो प्रक्रिया है जिसमें बॉडी भोजन को एनर्जी में बदलती है ताकि बॉडी का कार्य ठीक से चलता है। नाश्ता पूरी रात की नींद के बाद मेटाबॉलिज्म के काम पर लगता है। अगर नाश्ता ना किए जाए तो बॉडी में मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया धीमी होने के कारण कैलोरी जमने के स्थान पर बॉडी में जमा होने लगता है। युवा लोग मानते हैं कि अगर वो सुबह नाश्ता नहीं करेंगे तो उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उनका सोचना गलत है। नाश्ता न करने का परिणाम युवा अवस्था में भी कम नुकसानदेह नहीं है। अगर पौष्टिक नाश्ता उचित मात्रा में न लिए जाए तो शरीर कमजोर हो जाता है और वो दिन भर काम करना मुश्किल हो जाता है। नाश्ता न करने से डायबिटीज व मोटापे जैसे परेशानियां भी घेर सकती है। दिन का भोजन कम मात्रा में हो तो चल सकता है, लेकिन सुबह का नाश्ता अच्छी मात्रा में पौष्टिक व स्वास्थ्यवर्धक होना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, सिर्फ ये कहावत तो आपने सुनी होगी। ये महज एक कहावत नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत है। अक्सर महिलाएं सुबह के नाश्ते को नजरअंदाज करती है। वह घर के लोगों के खान पान पर तो पूरा ध्यान देती है, लेकिन स्वयं को हमेशा भूल जाती है। उनके लिए भी ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। सुबह का नाश्ता दिन भर की एनर्जी तो देती है, साथ ही यह शरीर को संतुलित भी बनाए रखता है। इसीलिए चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो या फिर महिला, सबके लिए नाश्ता जरूरी है। नाश्ता अधिक फैट बर्न करके आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। नाश्ता अगर प्रोटीन युक्त और फैट फ्री किया जाए तो दिन में अधिक खाने की इच्छा नहीं होती। साथ ही नाश्ते में न्यूट्रिशन फूड न लेने की वजह से वजन बढ़ता है, जिसे कम करना आसान नहीं होता। बॉडी में एनर्जी और दिन भर स्फूर्ति के बनाए रखने के लिए ताज़े और पौष्टिक तत्वों से युक्त नाश्ता करना चाहिए। ऐसा नाश्ता लेना चाहिए जो ईंधन की तरह काम करता है। कार्बोहाइड्रेट युक्त नाश्ता सबसे बेहतर है। यह आहार ग्लूकोज को धीरे धीरे रक्त प्रवाह में जाने देता है, जिसे आप लंबे समय तक चुस्त बने रहते हैं।

दोस्तों, अगर आप हमें कोई सूचना या सलाह देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 09515227039। आई रिपीट 09515227039।

0: 7039 और हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।
1: तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट के फायदे सुन लीजिए एक बार फिर। एक रिसर्च के अनुसार ब्रेकफास्ट करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है, शरीर में ऊर्जा का स्तर बरकरार रहता है, इंसुलिन का स्तर सामान्य रखने में मदद मिलती है, डायबिटीज के रोगियों के लिए अत्यंत जरूरी है, मोटापा व शरीर के वजन नियंत्रण रखने में मदद मिलती है, शरीर की पाचन क्षमता ठीक रहती है, मस्तिष्क को पर्याप्त पोषण व ऊर्जा मिलती है व शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। अपनी अपनी पाचन शक्ति व कार्यशैली के अनुसार लोग हल्के या भारी नाश्ता करना पसंद करते हैं। एक सामान्य नाश्ता ऐसा हो जो आपकी ऊर्जा की जरूरत को पूरा करके साथ साथ शरीर को पोषण भी प्रदान करे। अर्थात लंच या डिनर की तरह ब्रेकफास्ट भी संतुलित होना चाहिए। यह आपके पूरे दिन के कैलोरी जरूरत का 25% होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी अंकुरित चने, मूंग, सोयाबीन आदि को ले सकते हैं। दलिया या खिचड़ी, रोटी या सब्जी, इडली, पोहा, डोसा आदि, पराठा, दही आदि। बच्चों को उनकी पसंद का ध्यान रखते हुए हेल्थी ब्रेकफास्ट दे। वेल डियर फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ अस। दिस इज चेतन सेइंग बाय फॉर नाउ। आई विल गेट बैक टू यू विथ मोर सच यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट। टिल देन, बाय।

0: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
1: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले भी बात हुई है विविध भारती में फरमाइश में।
1: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
0: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है मारो।
1: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
0: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे, बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
1: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
0: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
1: अच्छा,
0: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
1: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
0: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
1: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
0: महीने तो ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
1: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
0: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर तो ज्यादातर चलता नहीं था, सोचते थे हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
1: अच्छा अच्छा,
0: फुटबॉल तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
1: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या?
0: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गई, जिम्मेदारी घर पे आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
1: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए, और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
0: आपकी सफाई फिल्म का गाना है, वादा कर ले साजना।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। वादा

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरौन, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश, MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब।
1: जी और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है।
1: जी जी,
0: पसीना आता है, परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं। आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है, कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने? ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल।
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, काटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज से सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा।
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कम कम तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं।
1: जी, काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे, खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी,
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी, भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी। और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है, सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे, बैटिंग करते हैं या बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप।
1: जी
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे, फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आज मुझे खुदा गवाह फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, आपको याद करूँ पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा कैसे खेलते थे, अच्छा लगता था, गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे, हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी तक अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम क्या बोलते, सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था जब जॉब लग गया था, मतलब सरकारी महाराष्ट्र साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था। पहले से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने,
0: क्या
1: आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस फ्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बडनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी मैं छोटेपन में, अभी खो खो खेलती थी। और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने के लिए देती थी दीदी,
0: क्यों
1: लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर बारसी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना सब पर अच्छा लगता है। आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता हूँ।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाएं आपको?
1: बिल्कुल का वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनना है मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोल रहा हूँ। मैम
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करता हूँ, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है।
0: अच्छा समय रहते घर पहुँच जाते हो?
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोड़ा इसे करते रहता है, और सिलाई का अलावा दूसरा सब में रखता हूँ दुकान और दूसरा है।
0: हाँ और विविध भारती के लिए कब समय निकालते हो?
1: जी मैम विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाया मैम।
0: कैसा महसूस कर रहे हो?
1: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
0: अच्छा क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
1: जी मैम आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैम हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
0: अरे वाह बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम। बिल्कुल,
0: नमस्ते। अरे, आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में, तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है, हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम,
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा, तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा, मैं आपसे 2 या 3 लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए, अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए, और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है, कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह की का प्रेरणा देता है, बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था, और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें

0: शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए, अपने आसपास मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
0: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
1: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा है, रंगापाड़ा सोनितपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है, आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे, आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और चाय का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो चाय का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय, कौन सी चाय, खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है, काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा चाय का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बनाता है, बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है, तो बताइए। चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी, फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जाधव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ, तो दीपक जी और क्या करती हैं, इसके अलावा कोई और शौक है आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, हम सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री, तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था?
1: थोड़ा हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228607288। हमारा दूसरा नंबर 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंधल, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छायांकित कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
1: गुजरात वासियों, आपनी प्रकृति अने पर्यावरण ने प्लास्टिक मुक्त बनावानो समय आवी गयो छे। गुजरात सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस थी शुरू थई रही छे विशेष प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। घरे प्लास्टिक नो कचरो अलग थी एकत्र करो अने डोर टू डोर कलेक्शन वैन मां ज आपो।
2: याद राखो, जाहिर जग्याए, नदी नाळा के खुल्ला मां प्लास्टिक क्यारेय न फेंको। प्लास्टिक ने बदले कापड़ नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरह नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मां सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। गुजरात वासियों, आपनी प्रकृति अने पर्यावरण ने प्लास्टिक मुक्त बनावानो समय आवी गयो छे। गुजरात सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस थी शुरू थई रही छे विशेष प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। घरे प्लास्टिक नो कचरो अलग थी एकत्र करो अने डोर टू डोर कलेक्शन वैन मां ज आपो।
2: याद राखो, जाहिर जग्याए, नदी नाळा के खुल्ला मां प्लास्टिक क्यारेय न फेंको। प्लास्टिक ने बदले कापड़ नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरह नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मां सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां प्रसारित।

सामिन, कुछ रिश्ते जैसे जन्म जन्मांतर के लगते हैं, क्योंकि ये रिश्ते केवल इस जीवन के नहीं होते, सात जन्मों से साथ हैं जैसे यूं लगता है कभी कभी। हालांकि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं है, पर प्यार में लगता है कि हम हर पल साथ रहें, एक दूसरे में खोए खोए से, एक दूसरे में गुथे हुए से, क्योंकि ये प्यार सिर्फ प्यार नहीं, आदत भी नहीं, रूह का एक हिस्सा

मैंने उस दिन पहली बार अपने भीतर उतर कर देखा, वहां मैं थी और वो था। उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा था, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा था, तुम्हारा चेहरा चांद जैसा नहीं है, पर तुम एक प्यार से लिखी हुई किताब हो जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। तुम जैसी हो तुम वैसी ही पूरी हो। कहते कहते उसकी आंखें शरारती हो गई थी।

0: दीवाना।
1: मैं चाहती थी कि कोई मेरे जज्बात को बिना बोले समझे। फिर तुम मिल गए। साधारण सा प्यार भी असाधारण हो जाता है तुम्हारे साथ जैसे। न कोई बड़े सपने, न दीवानगी, न झूठा रोमांस। तुम्हारा प्यार किसी फिल्मी डायलॉग से शुरू नहीं होता, वो तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। पर हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी आंखों में झांक कर शरारती अंदाज में कुछ कह जाते हो, कुछ कह जाते हो।
2: ए, आओ ना, दिल है बेकरार।

0: छाया गीत कार्यक्रम में लेते हैं एक अंतराल।
1: गुजरात वासियों, आपनी प्रकृति अने पर्यावरण ने प्लास्टिक मुक्त बनावानो समय आवी गयो छे। गुजरात सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस थी शुरू थई रही छे विशेष प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। घरे प्लास्टिक नो कचरो अलग थी एकत्र करो अने डोर टू डोर कलेक्शन वैन माज आपो।
2: याद रखो, जाहिर जग्याए, नदी नाळा के खुल्ला मा प्लास्टिक क्यारे न फेंको। प्लास्टिक ने बदले कापड़ नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरह नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मा सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। गुजरात वासियो, आपनी प्रकृति अने पर्यावरण ने प्लास्टिक मुक्त बनावानो समय आवी गयो छे। गुजरात सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस थी शुरू थई रही छे विशेष प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। घरे प्लास्टिक नो कचरो अलग थी एकत्र करो अने डोर टू डोर कलेक्शन वैन माज आपो।
2: याद रखो, जाहिर जग्याए, नदी नाळा के खुल्ला मा प्लास्टिक क्यारे न फेंको। प्लास्टिक ने बदले कापड़ नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरह नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मा सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मा प्रसार।
0: इस अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। अगर कोई थोड़ा सा भी थाम ले तो मन थिरकने लगता है, जिंदगी खुशगवार हो जाती है तब। हाँ, छोड़कर चले जाना तो आसान है, लेकिन थामे रहना, जैसे तुमने थामा मुझे। सैकड़ों को प्यार करने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें ने तो कहा था बस एक को 100 तरीके से प्यार किया जाए वही काफी है। प्रेम की जरूरत होती है सच्चाई, विश्वास और धैर्य। जरा थाम कर तो देखिए किसी को, कभी किसी तरह।

उसका यूं गले लगाना एक अजीब सुंदर सा एहसास है। वो थोड़ा सा स्पर्श, वो थोड़ी सी करीबी, अहा, एक आवेग नहीं, पल भर की शांति है वहां जैसे। उसका वो आलिंगन एक विश्वास देता है मेरे मन को। उसकी बाहों की खामोशी मेरी टूटन को जोड़ देती है। उसका यूं गले लगाना जैसे दिल की गहराइयों में पना देता है मेरे समूचे अस्तित्व को।

प्रेम सिर्फ एक अनुभव नहीं, प्रेम साथ रहने का नाम भी नहीं, ये तो एक रूपांतरण है। हाँ, एक रूपांतरण। तपिश है, नरमाहट है, गर्माहट है, विश्वास है, प्राणवायु है ये तो। उसका प्रेम सर्दियों में सुबह की सूरज की गर्मी जैसा है। उसका चाहना गर्मी की तपन से दूर एक ठंडक का एहसास देता है। कभी कभी ये प्रेम बसंत में हवा की हल्की सी सरसराहट जैसा लगता है, और कभी कभी वो प्रेम सितार की मधुर तान जैसा बन जाता है। प्रेम की वो गर्माहट, वो तपिश,

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तराने नए पुराने में। मैं हूं विधि जैन, नमस्कार।

हम सुन रहे थे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का यह गीत अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन के संगीत के साथ।

द लीजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से सुन रहे थे हम यह गीत, अलका याग्निक उदित नारायण की आवाज में, समीर के बोल और ए आर रहमान के संगीत के साथ।

0: हम सुन रहे थे गीत द बर्निंग ट्रेन फिल्म से। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें हैं, साहिर लुधियानवी के हैं बोल और राहुल देववर्मन का है संगीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद हुए हैं, जरा याद करो कुर्बानी।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
4: बेचारा
5: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
5: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
6: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
5: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाए अपने हर पल को खास।
5: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
7: तराने नए पुराने,
0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में दिल का रिश्ता फिल्म से यह गीत। अलका याग्निक, कुमार सानू, उदित नारायण की आवाजें, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत है।

हम सुन रहे थे ये गीत कुर्बानी फिल्म से, कंचन मनहर उदास और आनंद की आवाज में इंदीवर के इसके बोल लिखे हैं। कार्यक्रम सुन रहे हैं हम तराने नए पुराने, और अब हम चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम तराने नए पुराने प्रस्तुत होगा समाचार के बाद।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, हम थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज MT सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों

0: लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
1: We attach high importance to the welfare and well-being.
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमरीकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
0: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी से टिबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को एमटी मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड़ को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप સાંભળી રહ્યા છો આકાશવાણી વિવિધ ભારતીનું સુરત કેન્દ્ર 101.1 FM. સાંજના 6:05 થઈ છે. ગુજરાત હોવા જમાના કાર્યક્રમમાં આપનું સ્વાગત. આપની રેડિયો ફ્રેન્ડ સીમા કરે છે આ એક રચના સાથે. મુલાકાત કંઈક એવી હોય, મુલાકાત કંઈક એવી હોય જેમાં મારી ને તમારી અનુમતિ હોય. રિઝવવા એકબીજાને નહીં પણ પ્રેમમાં પડવાની ભીતિ હોય. જેમાં કોઈ સ્વાર્થ નહીં પણ નિસ્વાર્થની નીતિ હોય. એકબીજાને ફક્ત જોવાની જીદ હોય. શરતોને આધીન નહીં પણ બિનશરતી લાગણી હોય. એક મુલાકાત મિનેશ આવી હોય. બસ આપણી આવી જ ગુજરા હુઆ જમાના કાર્યક્રમની મુલાકાતમાં કારવા ફિલ્મનું ગીત લતા મંગેશકર અને મોહમ્મદ રફીના કંઠે ગવાયેલું સંભળાવવા જઈ રહી છું, જેમાં મઝરૂ સુલતાનપુરીના શબ્દો છે અને આર ડી બર્મનનું સંગીત.

0: हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 3 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, जिसके प्रथम भाग के प्रायोजक है
1: सुबह जराओ, शाम जराओ।
2: देव दर्शन थू।
3: They say the view from the top changes everything, but for a few, the view from the clouds is the only one that matters. The Indian Air Force invites applications for commissioned officers through AFCAT 2 of 2026. Registrations open on May 20th, 2026. Visit afcat.edcil.co.in and take the first step toward the blue.
4: Pata hai, duniya ke kai viksit desh aise bhi hain jahan muft ilaaj ek sapna hai. और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: श्रोताओ, आपना रेडियो सेट ऊपर बुधवार थी रविवार दरमियान सांजे 4 वागे प्रस्तुत थशे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे, सांभळवानु चूकशो नहीं।
7: 101.1 MHz
8: हेलो, आकाशवाणी सूरत एफएम स्पीकिंग।
9: हाँ, सूरत एफएम।
8: कौन बोलो?
9: हाँ मैडम, हूँ एक व्यापारी बोलू छू।
8: ओके, केवो चाले छे आपनो व्यापार?
9: चाले राके बेन, बहु मजा नथी आवती।
8: चलवो नहीं, धमधमात दौड़ाओ आपना व्यापार ने। अमारा असंख्य श्रोताओ सुधी पहुँचाड़ो आपनी वात। जाहेरात आपो आकाशवाणी विविध भारती सूरत एफएम पर।
7: सूरत एफएम।
8: अमारो फोन नंबर छे 2234450 અને 9428404140 અથવા તો ઈમેલ કરો suratfm1011@gmail.com પર। આપની સમૃદ્ધિનો સારથી સુરત એફએમ
7: 101.1
10: કમર્શિયલ બ્રેક પછી ગુજરાવા જમાના કાર્યક્રમ ફરી માણીએ। જ્યારે મેં તને જોઈ અને તે મને, આપણને ત્યાર પછી કદાચ કોઈ બીજી વ્યક્તિ એવી દેખાય જ નહીં કે જેને જોઈને સમય થોભી જાય, હોશ ગુમાવી બેસી અને કંઈ સૂઝે નહીં। હકીકતમાં તો એકબીજાને જોઈએ, પણ સ્વપ્નમાં પણ આપણે જાણે એકબીજાને જોતા હોઈએ એવું લાગ્યા કરે છે। દુશ્મન ફિલ્મનું ગીત, ગીતકાર આનંદ બક્ષી, સંગીતકાર લક્ષ્મીકાંત પ્યારેલાલ, લતા મંગેશકર કિશોર કુમારના સ્વરમાં હવે પછીનું આ ગીત છે

0: सुबह 11 बजे का समय होगा रंग तरंग का, 12:05 पर सजेगी यादों की महफिल। दिन के ठीक 1 बजे आप जुड़ेंगे हमारे साथ सुरीला सफर में, 2 बजे वंदे मातरम एक जय घोष, लेखक मिलिंद सबनीस, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। दो बजकर तीस मिनट पर सुनेंगे सदाबहार नगमे और 3 बजे होगा कार्यक्रम हेलो सहेली, 4 बजे खुलेगा गीतों भरी कहानी का पिटारा, कहानी अंजलि, लेखक अर्गवान अबही, संपादन सहायक काजल भदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। 5 बजे का समय होगा छाया गीत का, 5:30 पर तराने नए पुराने, 6:05 पर तराने नए पुराने फिर सुनेंगे हम, 6:30 पर पुनः सुनाएंगे हम आपको झरोखा। शाम 7 बजे का समय होगा जयमाला का, 7:45 पर इंद्रधनुष गुलदस्ता, 8 बजे हम सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल, नाटिका सफेदे के पेड़, रेवती शरण शर्मा का लेखन निर्देशन दीनानाथ का। 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे झरोका, आज और कल प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।
1: मित्रों, झरोखा बाद हवे प्रस्तुत छे गुजरावा जमाना कार्यक्रमनो शेष भाग। जरा प्रेम थाय ત્યારે તન મન બધું જ ભાન ભૂલે છે, અને જરા વાયરો વાય કે પંખીની પાંખ ફફડે ત્યારે મન એ વાયરા અને પંખીની સાથે પ્રિયતમની તરફ ઉડવા લાગે છે। આમ્રપાલી ફિલ્મનો ગીત હસરત જયપુરીનું આ ગીત છે, શંકર જયકિશનનું સંગીત અને લતા મંગેશકરના સ્વરમાં માણીશું।

0: हर रोज सुबह 7 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, जिसके प्रायोजक है वेको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: गुजरात वासियों, आपनी प्रकृति अने पर्यावरण ने प्लास्टिक मुक्त बनावानो समय आवी गयो छे। गुजरात सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस थी शुरू थई रही छे विशेष प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। घरे प्लास्टिक नो कचरो अलग थी एकत्र करो अने डोर टू डोर कलेक्शन वैन मां ज आपो।
2: याद राखो, जाहिर जग्याए, नदी नाळा के खुल्ला मां प्लास्टिक क्यारे न फेंको। प्लास्टिक ने बदले कापड नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरे नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मां सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। गुजरात वासियों, आपनी प्रकृति अने पर्यावरण ने प्लास्टिक मुक्त बनावानो समय आवी गयो छे। गुजरात सरकार द्वारा 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस थी शुरू थई रही छे विशेष प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव। घरे प्लास्टिक नो कचरो अलग थी एकत्र करो अने डोर टू डोर कलेक्शन वैन मां ज आपो।
2: याद राखो, जाहिर जग्याए, नदी नाळा के खुल्ला मां प्लास्टिक क्यारे न फेंको। प्लास्टिक ने बदले कापड नी थैली, स्टील नी बॉटल वगैरे नो उपयोग करो।
1: आवो आ प्लास्टिक कलेक्शन ड्राइव मां सहभागी बनी स्वच्छ अने प्लास्टिक मुक्त गुजरात बनावीए। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन गुजरात द्वारा जनहित मां प्रसारित।
3: Fantastic fun for family.
4: 101.1 MHz. શ્રેયસ જોશીએ ખૂબ સરસ કહ્યું છે, સૂર્યનો પ્રકાશ છે અને પુષ્પની સુવાસ છે તું, દેવનો આભાસ છે અને કાવ્યની મીઠાશ છે તું, શબ્દમાં હું શું કહું, મારા પ્રાસનો એ શ્વાસ છે તું। સાથે ફિલ્મનું મુકેશ અને સુમન કલ્યાણપુરના સ્વરમાં આ ગીત માણીએ। શબ્દકાર છે મઝરૂ સુલતાનપુરી અને નૌશાદનું સંગીત છે।

0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम जयमाला में। मैं हूं विधि जैन, हृदय से आप सभी का स्वागत करती हूं। फौजी भाइयों को विशेष प्रणाम करती हूं और यह सुंदर सा गीत भारतीय सेना के नाम।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये।

0: भारतीय सेना।
1: भारतीय सेना के लिए इस प्यारे से वंदन गीत के साथ में आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम जयमाला की। पहला गीत हम ले रहे हैं मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोलों के साथ, शंकर जयकिशन का संगीत है, जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से।

हम सुन रहे थे ये गीत तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में अगला गीत, जो कि है साथी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज है, मजरूह सुल्तानपुरी के हैं बोल और नौशाद का है संगीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन, अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है जयमाला। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला का अगला गीत, जो कि है फिल्म आया सावन झूमके से। लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के हैं बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है संगीत।

0: हम सुन रहे थे प्यासा सावन फिल्म का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज में, संतोष आनंद के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम जयमाला में एक और सुंदर सा गीत जो कि है सौदागर फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, रविंद्र जैन के बोल और रविंद्र जैन का ही है संगीत।
1: अलिया सिकंदर, तू अत्यारे दरिया जाई छे?
2: अरे ना भाई ना, मने खबर छे के मॉनसून ब्रेक दरमियान दरिये न जवाय अने माछीमारी न कराय, समझ्यो?
1: ए बराबर, मॉनसून ब्रेक दरमियान दरियो खेडवो ए गंभीर अने सजापात्र गुनो छे। अने हाँ, जो कोई अजाणी अथवा शंकास्पद व्यक्ति के बोट दरियामां देखाय तो तात्कालिक 1093 पर कॉल करी मरीन पोलिस ने जाण करवी। आपनी सजागता अने तकेदारी आपे दरियाई सुरक्षानी खातरी। गुजरात मरीन पोलिस द्वारा जनहितमां प्रसारित।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

हम सुन रहे थे ये गीत वापस फिल्म से, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है जयमाला।

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

0: रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।
1: हम सुन रहे थे सिलसिला फिल्म का ये गीत अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और शिव हरी के संगीत के साथ। यहीं पर समाप्त होता है कार्यक्रम जयमाला। नमस्कार।

0: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में।
1: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता।
0: आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म निर्देशक इकबाल अली से। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने।
1: दिल के लिए दिल का कोई पैगाम तो बता।
0: आज सुनिए दूसरा भाग।
1: कल के लिए अपना कोई प्रोग्राम तो बता।
0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो में आज हमारे साथ इकबाल अली साहब हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अलग अलग तरह के काम किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे दिलचस्प बातचीत का सिलसिला। बहुत बहुत स्वागत इकबाल अली साहब।
2: शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए राजेश हमाल जी एक नेपाल के आज के सुपरस्टार हैं वहाँ के।
0: अच्छा,
2: उनके विषय में भी एक दो शब्द आपको बता देता हूँ। छत्तीस जी करके एक थे, वो डायरेक्टर ही थे वहाँ के, काफी फेमस डायरेक्टर थे नेपाल के, सतीश कुमार सर
0: जी,
2: अंधेरी में रहते थे। सतीश जी ने मुझे कॉल करके बुलाया, नेपाली फिल्म का नाम था गोपी किशन। तो उन्होंने बोला कि आपको पूरी फिल्म करनी है।
0: जी जी।
2: मैंने सर वो पूरी फिल्म की, राजेश हमाल जी की फर्स्ट फिल्म थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर वो फिल्म जो सिल्वर जुबली गोल्डन जुबली हुई थी नेपाल में।
0: ओके।
2: और पहली फिल्म थी राजेश हमाल जी की, आज वहां के सुपरस्टार हैं। तो ऐसा मैंने सर बहुत सी फिल्में की और सीखता गया, अभी भी सीख ही रहा हूँ। फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, उम्र भी होती जा रही है, सीखने में तो जीवन निकल जाएगा, पूरे जीवन में आदमी कभी पूरा हो नहीं सकता है।
0: जी जी।
2: तो मैं स्वतंत्र रूप से फिर मैंने सबसे पहले तो यूनियन ज्वाइन की, मेंबर बना मैं, के बाद में सर फिर मैंने स्वतंत्र रूप से निर्देशन के क्षेत्र में मैंने संघर्ष शुरू किया। तो एक प्रोड्यूसर थे, उनका नाम था अजय शाह, और उनके एक साथी थे।

0: अनंत।
1: हेलो नीरजा, आज कैसे भूल पड़ी?
0: भूलती ही कब हूँ, हर पल तो आके तुम्हें ही खोजा करती हूँ। न जाने तुम्हारी सांवली सलोनी सूरत में कैसा आकर्षण है कि सांसों की बंसी तुम्हारे ही नाम को तैरती रहती है।
1: बस बहने लगी ना भावलोक में।
0: सुनो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत रिंग खरीदी है, देखो। सुनो, आज शाम पिक्चर देखने चलोगे?
1: मेरा आज तो आर्ट्स फैकल्टी में लेक्चर है।
2: ओ डार्लिंग, तुम तो हर समय व्यस्त रहते हो, मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचती हूँ, कितने सपने सजाती हूँ, पर तुम पर कोई असर नहीं होता। The pain of loving you is almost more than I can bear.
1: मुझे देर हो रही है, तुम्हें कोई खास बात करनी है?
0: कहने को तो बहुत कुछ है अनंत, कल रात मैंने एक सपना देखा। तुम गुलाब का एक फूल लाए हो और चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। कहने लगे, नीरजा ये फूल तुम्हारे बालों में लगा दूं? सच, उस समय मैं कितनी खुश थी, जैसे फूल पत्ती के प्रेम पर जिंदा रहता है ना, बस ऐसे ही मैं तुम्हारी। काश ये सपना असली होता।
1: सपना वही देखते हैं जो अपने प्यार को हासिल नहीं कर पाते।
0: गलत, जो जिसे प्रेम करता है वही उसका सपना देखता है।
1: ये जानते हुए भी तुम मुझसे प्रेम करते हो?
0: ये भी कोई पूछने की बात है?
1: तुम्हें गलत फहमी।
0: मुझे वो भी प्रिय है क्योंकि वो तुम्हारी ही दी हुई है।
1: ये तुम्हारे अनुराग की चरम सीमा है नीरजा, जो सत्य को जानते हुए भी तुम अनंत की ओर बढ़ रही हो।
0: क्या करूं, अनंत

0: गामी जो ठहरी।
1: तुम्हें समझाना मुश्किल है।
0: एक बात मानोगे?
1: क्या?
0: कल शाम हमारे कॉलेज के सालाना जलसे में मेरा डांस का प्रोग्राम है, आओगे ना?
1: कल तो मैं बहुत बिजी हूँ।
0: प्लीज कैसे भी आइए।
1: देखो मैं मजबूर हूँ। ओके फिर मिलेंगे।
0: निष्ठुर। अरे हाय, सुनिए तो आनंद जी, दिल तोड़ दिया बिचारी का। दर्शन के प्यासे दो लोचन, बिन देखे अफुलाते, हर सिंगार के फूल से सपने पलछिन में मुरझाते।
2: देख झरना, मुझे तंग मत कर, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है।
0: इसीलिए तो कहती हूँ, प्रीत किए दुख होए।
2: दुख हो या सुख, मुझे अनंत से प्रेम है।
0: बस जब देखो अनंत अनंत अनंत, इसका कोई अंत भी है? जब उसे तेरी कोई चिंता नहीं तो तू उसके लिए क्यों इतनी व्याकुल रहती है? नहीं मानता तो सब्स्टिट्यूट कर दो।
2: कब तक नहीं मानेगा? मैं इंतजार कर सकती हूँ।
0: अगर उसने शादी से इनकार कर दिया तो?
2: ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने प्रेम पर भरोसा है। मैं अपनी पूजा, भक्ति और लगन से उसे जीत लूंगी। अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है तो उसे एक दिन बदलना ही पड़ेगा।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहला प्रेम है ना, पर ज्यादा भरोसा मत करना।
2: तू नहीं जानती झरना, पहला प्रेम गले में बंधी उस घंटी की तरह होता है जो बस हर समय कानों में बजती ही रहती।
0: तुम घंटी बजाओ और वेटर को बुलाओ।
2: अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, तुम कुछ लोगी?
0: कुछ नहीं, बस मुझे घर तक लिफ्ट दे देना।
2: अच्छा आओ चले।
3: नीरा जी।
0: कौन है?
3: वही आपका रोमियो।
0: ओ आप, क्या कहना चाहते हैं?
3: कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, पर यह कमबख्त दिल कुछ धड़कता सा है। सच तो यह है कि जब आपसे बातें करता हूँ तो सब कुछ फूल सा जाता हूँ और कुछ भी याद नहीं रहता कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ।
0: मिस्टर रूप, मालूम होता है आजकल आप बहुत फिल्में देखने लगे हैं।
3: करेक्ट, पर ये मेरे दिल की फिल्म है जिसे सिर्फ आप ही अपने मन की आंखों से देख सकती हैं। आप ही मेरे सपनों को साकार कर सकती हैं। क्या आपको मुझसे प्रेम नहीं है?
0: मित्रता का अर्थ प्रेम नहीं होता मिस्टर रूप, मुझे आपसे हमदर्दी है। मैं कुछ हद तक आपको पसंद भी करती हूँ, पर प्रेम नहीं।
3: पसंद और प्रेम दोनों में थोड़ा ही फासला होता है। पसंद का दूसरा नाम ही कशिश है, और जहाँ कशिश है वहीं मोहब्बत है।
0: ये आपका फलसफा हो सकता है
3: मगर सच
0: नहीं, एकदम गलत। मुझे आपसे प्रेम नहीं है।
3: कल शाम मिलोगी? नहीं,
0: मेरा डांस का प्रोग्राम है। सॉरी, अब आप जा सकते हैं।
3: हाय, किस बुत की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ।

0: दो निर्जा।
1: तुम यहाँ भी?
0: यहाँ तुम हम?
1: मेरा ख्याल छोड़ दो।
0: मैं तो बधाई देने आया हूँ।
1: किस बात की?
0: नृत्य की सफलता पर।
1: ओह धन्यवाद।
0: सुनी, ये कुछ फूल आपके लिए लाया था।
1: मुझे देर हो रही है, चलो धरना।
2: कुछ भी हो, रूप है दिलचस्प आदमी। तुझे बहुत पसंद है तो तू उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर वो मुझे इतना चाहता जितना तुम्हें चाहता है तो जरूर कर लेती। क्या कमी है उसमें? हर बात में A1 है। A1 हो या टॉप ग्रेड, मुझे तनिक पसंद नहीं। मुझे तो उससे नफरत है। चलो नफरत ही सही, कुछ तो है तुम्हारे दिल में उसके लिए। बेचारा कितने अरमान रखता है।
1: देख झरना, अगर तुझे रूप की तारीफ करनी है ना तो पहले मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ, अनंत के घर बाद में जाऊंगी।
2: अच्छा भाई, चुप हो गई। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर कौन करे?
1: मैं मगर हूँ।
2: यू सिली गर्ल। लो वो आ गया तुम्हारे चहेते का बंगला। रामू
3: जी,
2: अनंत बाबू हैं?
3: जी नहीं, और वो तो पिक्चर देखने गए।
2: अकेले?
3: जी नहीं, साथ में एक थी।
2: थी? नाम?
3: नाम तो मालूम नहीं, पर
2: ठीक है। आनंद जी आए तो कहना मैं आई थी।
3: जी अच्छा।
1: ओह छन्ना, अब तुम गाड़ी ड्राइव करो, मेरा तो मूड एकदम ऑफ हो गया है।
2: और कहीं गाड़ी का मूड ऑफ हो गया तो
1: फिर मजाक।
2: वो तो मेरी आदत है। सच, तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाती हो। अनंत से फोन करके पूछ लेना क्या बात है, हो सकता है नौकर को सही बात ना मालूम हो।
1: प्लीज झरना ड्राइव कर, मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ। अनंत, ये तुमने क्या किया? मेरी पूजा, मेरी आराधना, मेरा प्रेम क्षण भर में ठुकरा दी। तुम नहीं जानते अनंत, नारी जीवन में सिर्फ एक पुरुष को ही प्रेम करती है, उसी को अपना इष्ट, अपना देवता मानती है। मैंने संपूर्ण निष्ठा से तुम्हें चाहा, तो समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे क्यों रूठ गए, क्यों रूठ गए। शायद मुझ में ही कोई कमी थी जो मैं तुम्हें नहीं पा सकी। पाना या न पाना तो भाग्य की बात है, पर तुम्हें बुला देना मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं।

0: नीरजा।
1: हेलो।
0: तुम अभी घर आई थी?
1: हाँ।
0: कोई खास बात?
1: वही तो मुझे पूछनी है।
0: कौन सी बात?
1: वही जो तुम बताना नहीं चाहते।
0: ऐसी तो कोई बात नहीं।
1: पिक्चर किसके साथ गई थी?
0: तो ये बात है।
1: कौन है वो लड़की?
0: मेरी मंगेतर।
1: तो मैं क्या थी अब तक?
0: एक मित्र।
1: तुमने मुझे धोखा दिया।
0: गलत।
1: तुम विश्वासघाती हो।
0: ये तुम्हारा भ्रम है।
1: सत्य को भ्रम देते हो।
0: नहीं, भ्रम है तुम्हारा। मैं पहले भी तुम्हारा एक मित्र था और आज भी एक मित्र हूं।
1: ठीक है, ठीक है, पर तुमने मुझसे पूछा तक नहीं, मुझे अंधेरे में क्यों रखा?
0: तुम कल्पना के पंखों पर उड़ती रही तो मैं क्या करता? मैंने कई बार तुम्हारी उपेक्षा भी की, पर तुम अपनी जिद पर अड़ी रही। इसमें मेरा क्या दोष है?
1: तुमने मेरे प्रेम को ठुकराया। आखिर मुझमें क्या कमी थी जो तुमने मुझे से शादी नहीं की?
0: जानना चाहती हो?
1: हाँ।
0: तुम अति आधुनिक और स्वच्छंद हो। पति को सिर्फ तुम एक बैनर समझती हो। मुझे घर से प्यार करने वाली पत्नी चाहिए नीरजा, फैशन की कुड़िया या मॉडल नहीं।
1: गलत है आनंद, गलत है। आई एम होम लविंग।
0: फिर तुम्हारा रूप से भी प्रेम है। राकेश के साथ भी मैंने तुम्हें कई बार घूमते देखा है।
1: वो तो सिर्फ मेरा एक मित्र है और कुछ भी नहीं।
0: मित्र है तो तुम्हारे चक्कर क्यों काटता है? तुम भी तो बहुत घुलमिल कर बातें करती हो उससे।
1: तुम्हें भ्रम है आनंद, भ्रम है। अगर मैंने किसी को चाहा है तो सिर्फ तुम्हें।
0: ये तुम्हारा ढोंग है।
1: चाहे दुनिया से सच्चाई उठ गई है, वरना तुम कभी ऐसा नहीं कहते।
0: दुख का राग अलापने से सुख नहीं मिलता नीरजा। जीवन की राहें बहुत लंबी हैं। मैं तो चाहता हूं कि तुम किसी अच्छे युवक से विवाह कर लो और मुझे भूल जाओ सदा के लिए।
1: ये तुम कह रहे हो आनंद, तुम कह रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूंगी, ऐसा ही करूंगी।
0: सुनो तो नीरजा, नीरजा।

0: ओ मिर्जा, आप और मेरे यहाँ, यकीन नहीं होता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा?
1: जी नहीं, ये हकीकत है। तुम मुझे बहुत चाहते हो ना रूप।
0: जी
1: मैं मानती हूँ, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, उपेक्षा की, अपमान किया।
0: लेकिन
1: काश मुझे पहले मालूम होता कि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो

0: कभी तुम्हारा दिल ना दुखा दे।
1: कुछ मेरी बात भी तो सुनिए।
0: मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। उस दिन कॉलेज के सालाना जलसे में तुम मुझे फूल देने आए थे और मैं ठुकरा कर चली गई थी। मुझे माफ कर दो रूप।
1: बस करो नीरजा, तुम कहना क्या चाहती हो?
0: मुझे तुमसे हमदर्दी है।
1: बस।
0: मैं तुमसे प्रेम करती हूँ।
1: बस।
0: मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ।
1: काश ये इरादा तुमने पहले कर लिया होता, अब बहुत देर हो चुकी है।
0: क्या?
1: और मैं एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी मिस नीरजा। अरे सुनिए सुनिए तो, मेरी शादी का कार्ड तो लेती जाइए।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक थोड़ी ही देर बाद प्रस्तुत होगा आपके बीच में।
1: छेल्ला 12 वर्ष थी अही विकास ना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थ नी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व ने। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरानी, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकता नी, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनामता भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्ष नी आ यात्रा छे गुजरात मां अंत्योदय अने गरीब कल्याण नी, सेवा अने सुशासन नी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी, अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देश नू ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रह्यु छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्यनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नू पावर हाउस। आवो आ विकास ना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना।
2: हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 3 बजे जरूर सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, जिसके प्रथम भाग के प्रायोजक है
3: सुबह जराओ शाम जराओ
4: देव दर्शन थू।

हम सुन रहे थे ये गीत यंगिस्तान फिल्म से, अरिजीत सिंह की आवाज में। कौशर मुनीर ने इसे लिखा और जीत गांगुली ने इसे संगीतबद्ध किया।

0: हम सुन रहे थे पीके फिल्म का यह गीत, शान और श्रेया घोषाल ने इसे गाया, स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा और शांतनु मोइत्रा ने इसे संगीतबद्ध किया। सुनते हैं ये संदेश।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य जवान अपने थी धन्य

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक, और चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में सुनते हैं अगला गीत, जो कि है फिल्म रिफ्यूजी से सोनू निगम अलका याग्निक की आवाजों में जावेद अख्तर के बोलों के साथ, अनु मलिक के संगीत के साथ सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

हम सुन रहे थे यू मी और हम फिल्म का यह गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। मुन्ना धीमान ने इसे लिखा और विशाल भारद्वाज ने इसे संगीतबद्ध किया है। आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम चित्रलोक का यह अंतिम गीत।

हम सुन रहे थे स्वदेश फिल्म का यह गीत एआर रहमान की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल और एआर रहमान के संगीत के साथ। कार्यक्रम चित्रलोक यहीं पर समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। रात के 8:45 होने को हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और

0: के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास

0: के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
2: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
1: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
3: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
1: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।

0: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशारानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सांभळी रह्या छो आकाशवाणी विविध भारतीनुं सूरत केन्द्र 101.1 FM। हवे सांभळशो आकाशवाणी अमदावादथी प्रसारित सांजना प्रादेशिक समाचारनुं ध्वनिमुद्रण।

हम सुन रहे थे अर्थ फिल्म से यह गीत। जगजीत सिंह की आवाज़ में कैफी आजमी के बोल और कुलदीप सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया, एक नगमा आपके नाम किया। चलिए चलते हैं आपके लिए इस कार्यक्रम में अगले नगमे की ओर, जो कि है बाजार फिल्म से। लता मंगेशकर, तलत अजीज की आवाज़ें हैं, मखदूम मोहिद्दीन के बोल हैं और खयाम का संगीत।

0: के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, और हम प्रस्तुत कर रहे हैं आपके लिए

हम सुन रहे थे उमराव जान फिल्म से तलत अजीज की आवाज में शहरयार के बोल और खयाम के संगीत से सजी हुई इस गजल को। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए मैं आज की अंतिम गजल। मासूम फिल्म से है और अनूप घोषाल की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और आर डी वर्मन का है संगीत।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम आपके लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।
2: छेल्ला 12 वर्ष थी अही विकास ना संकल्पो कदी अटकता नथी, पुरुषार्थ नी गाथाओ क्यारे खूटती नथी। आ यात्रा छे छेल्ला 12 वर्ष थी विकास ने समर्पित यशस्वी वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ना नेतृत्व ने। 12 वर्ष विश्वास ना, विकास ना, जन कल्याण ना। आ सफर छे मां नर्मदा थी जल समृद्ध थती धरानी, स्मार्ट सिटीज थी दुनिया मां चमकती आधुनिकता नी, बुलेट ट्रेन अने वंदे भारत नी गतिशीलता थी लखाता एक नवा भविष्य नी, अने गगनामता भारत ना आत्मविश्वास नी। 12 वर्ष नी आ यात्रा छे गुजरात मां अंत्योदय अने गरीब कल्याण नी, सेवा अने सुशासन नी, पीएम आवास, हर घर जल, किसान सम्मान अने आयुष्मान कवच थी मजबूत थता जन जन ना आत्मविश्वास नी, अने हवे तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ना प्रयासों थी देशनू ग्रोथ एंजिन गुजरात बनी रह्यु छे ग्रीन एनर्जी अने भविष्यनी आधुनिक टेक्नोलॉजी नू पावर हाउस। आवो आ विकासना महायज्ञ ने वधु वेगवंतो बनावीए, विकसित भारत माटे विकसित गुजरात बनावीए। 12 वर्ष विश्वासना, विकासना, जन कल्याणना।
3: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: मेरा जन्म भी बंबई का है और मैं भी साउथ बॉम्बे में ही मेरा बचपना मैंने बिताया। हम लोग पहले नाना चौक पे रहते थे। बहुत कम उम्र से पिताजी के साथ में, मेरे पिताजी पंडित चतुर्भुज राठौर जो बहुत बड़े शास्त्रीय गायक थे, तो संगीत जो था वो और खेलों से ज़्यादा प्रभावित हमें संगीत ने किया, क्योंकि अगर कोई पहली आवाज़ सुनी तो वो किसी साहस की सुनी, या कोई पहला खिलौना हाथ में आया तो वो कोई इंस्ट्रूमेंट ही था। लेकिन ये था कि हम लोग पांच भाई थे और हम लोग पांचों इतने, मतलब खेल कूद में भी हम लोगों को सबको बड़ा हम लोगों को शौक था।
1: उनके नाम जानना चाहेंगे हम।
0: सबसे बड़े भैया जो है हमारे श्रवण भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उसके बाद में एक सिस्टर है मेरी ललिता, एक और भाई हैं अमर जो बिजनेस में है, फिर मैं हूँ, मेरे से छोटे विनोद ही इज ऑल्सो प्लेबैक सिंगर, और सबसे छोटा है दिलीप। मुझे एक किस्सा बराबर याद आ रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी स्कूल में टीचर थे, म्यूजिक सिखाते थे, क्योंकि मैं संगीत में बहुत ज़्यादा एक्टिव था, तो जब भी कोई स्कूल का फंक्शन होता था तो कहीं ना कहीं वो मुझे उसमें तबला बजाने के लिए कहते थे या गाने के लिए कहते थे।

0: पढ़ाई में कभी दिलचस्पी नहीं हुई, क्योंकि संगीत बहुत कम उम्र से ऐसा रच बस गया था कि या तो खेल का शौक था या संगीत का शौक था, पढ़ाई में बहुत मैं हमेशा पीछे रहा।
1: रूप कुमार राठौर एक दक्ष तबला वादक हैं। गायन की दुनिया में सक्रिय होने से पहले शास्त्रीय संगीत की महफिलों में कई नामचीन गायकों के साथ संगत किया करते थे। 1984 में रूप कुमार राठौर ने गायन की दुनिया में कदम रखा और अपनी पहचान बनाई एक सुरीले गजल गायक के रूप में।

पार्श्व गायक के रूप में रूप कुमार राठौड़ को पहला मौका दिया संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म अंगार में। इसके बाद आई फिल्म भैरवी, जिसमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज को बहुत पसंद किया गया। कुछ और फिल्में मिली जैसे गुमराह, मोहब्बत की आरजू, तेजस्विनी और नाजायज, लेकिन रूप कुमार राठौड़ को असली कामयाबी मिली फिल्म बॉर्डर से।

पहला प्रोग्राम मुझे याद है, जैसे मैं 6 साल का था तब मैंने स्टेज पे पहला परफॉर्मेंस एक गौला टैंक पे, एक हॉल है तेजपाल हॉल, वहां पर मेरे करियर की शुरुआत हुई। मैं मतलब वोकल सीख सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों बचपन से ही एक लगाव तबले की तरफ, एक ज़्यादा रुझान या रुचि रही तबले से। और उन दिनों घर में काफ़ी म्यूजिशनों का आना जाना रहता था और कई उस्ताद, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि सबके पास में बहुत टाइम होता था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बड़ा भाईचारा, प्यार, और गाने बजाने की बातें ज़्यादा होती थी राधर देन गॉसिप। तो वो टाइम ऐसा था कि नामकरण है तो रात भर प्रोग्राम हो रहा है, उसमें सब आर्टिस्ट आ रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो जो आवाज़, जो तबले की जो पहली आवाज़ या धा या ता या तिट या सुना होगा, तो उसने कुछ ऐसा प्रभाव दिमाग पर डाला कि अगर मैं रो रहा हूँ और अगर मेरे हाथ में तबला आ गया तो मैं चुप हो जाता था। और मुझे बराबर याद है कि एक बार मुझे बहुत बुखार था, 102-103 डिग्री बुखार था, और रात में अब्बा जी, जिसे हम प्यार से अब्बा जी कहते थे, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब घर पे आए और उन्होंने देखा कि अरे बेटे को बहुत बुखार है। तो मैं सो रहा था, फिर थोड़ी देर बाद ये हुआ कि उन्होंने गाना बजा

शुरू किया, तबला की आवाज मुझे सुनाई दी और मेरी आंख खुल गई और मैं रोने लगा, जिद करने लगा। और फिर खान साहब ने, अब्बा जी ने मुझे अपनी गोद में बिठाया और वो बजाते रहे और एक घंटे में जो मेरा बुखार भाग गया। हाँ, तो वाकई वो कुछ ऐसा कुछ चमत्कार या ऐसा कुछ वो दैवी साउंड या उसका जो नाद था वो मेरे मनस पे मतलब इतना ज्यादा छाया हुआ था। तो शायद यही वजह रही हो सकती है कि मैंने तबला एज अ प्रोफेशनल बजाना शुरू किया।

0: रुकुमार जी, आपने बताया कि आपके घर में संगीत की महफिलें हुआ करती थी और बहुत नामी गिरामी कलाकार उस महफिल में आया करते थे। मुझे बताएंगे कि कौन कौन आते थे?
1: अबाजी का आना जाना रहता था,
0: उस्ताद अल्लाह खान
1: साहब और उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब, एक पंडित सदाशिव पवार जो बहुत, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ तबले में भी, पंडित काशीनाथ मिश्रा, इनका भी काफ़ी आना जाना रहता था, और एक दशरथ पुजारी करके एक बहुत मराठी के बहुत बड़े कंपोज़र हुए, उनसे भी बड़ा याराना था पिताजी का, और शमीम अहमद खान साहब, उनका भी आना जाना रहता था।
0: तबला जो था उसमें आपका गुरु पिताजी तो थे ही, इसके अलावा और कौन से आपने सीखा?
1: कहा जाता है कि देखिया सीखिया परखिया, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो देखने से आई, कुछ चीज़ें सीखने से आई, और कुछ चीज़ें जो हैं अपने आप परखने से आई। प्रभावित मैं, इतनी लंबी लिस्ट है कि वो सब मेरे गुरुजन ही हैं, ख़ास तौर से उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अब्दुल सत्तार तारी, पंडित शांता प्रसाद जी, पंडित कृष्ण महाराज जी, उस्ताद तिरखवा खान साहब, उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब, मतलब इतनी लंबी लिस्ट है कि इन सब को देख देख के, सुन सुन के जो है मैंने विद्या हासिल की। जैसे एकलव्य ने द्रोणाचार्य का पुतला बनाया और जो है विद्या हासिल की, तो मैं भी इसी तरह से मैंने इनको सुन सुन के काफ़ी चीज़ें अपने हाथ में बिठाई, और मैं आज भी वो चीज़ें बजाता हूँ। बड़ा खूबसूरत एल्बम जिसका टाइटल था वादा, और इसके संगीतकार मशहूर उस्ताद अमजद अली खान साहब, और गज़लें सारी लिखी थी एक और बड़े उस्ताद गुलजार साहब, और उनके साथ में ये काम करने का मौका मिला, उसमें से ये एक चीज़ जो बहुत पॉपुलर हुई, ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था।

0: 84 में मुझे बराबर याद है कि कहीं प्रोग्राम था, पाटकर हॉल में प्रोग्राम था, और वहाँ मैं एज ए तबला प्लेयर ही गया था
1: मुंबई में,
0: मुंबई में, और वहाँ पर हारमोनियम पड़ा हुआ था, ग्रीन रूम में मैं बैठ करके मैं कुछ गा रहा था, और कहीं से सोनाली की एंट्री हुई, उसको लगा कि कहीं कोई कैसेट सुन रहा है या कोई टेप बज रही है, और जब उसने मुझे देखा तो बड़ी हैरत से वो देखते रही और मुझे कहा कि तुम्हें तो गाना शुरू कर देना चाहिए, तुम तो इतना अच्छा गाते हो, इतना नेचुरल गला है तुम्हारा।
2: संगीत के प्रति अनुराग सोनाली और रूप कुमार राठौड़ को एक दूसरे के करीब लाया और दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हो गए।

0: जमाना।
1: लंबे समय तक गायन के बॉर्डर पर रहने वाले रूप कुमार राठौड़ फिल्म बॉर्डर के बाद गायन की मुख्य धारा में आ गए। उनकी और कुछ मशहूर फिल्में हैं करीब, हम साथ साथ हैं, हो तू तू, लावारिस, सरफरोश।

0: मीला दिल पे मत ले यार, गज गामिनी रहना है तेरे दिल में वीर।
1: दबी दबी सांसों में सुना था मैंने, भूले बिना मेरा नाम आया।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार और गायक रूप कुमार राठौड़ पर। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया रमेश गोखले ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया विजय दीपक छिब्बर ने।
1: आज के फनकार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद

0: इस सिवा उन्होंने पहना नहीं। एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन जो

0: विविध भारती छाय गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

की खिदमत है छाया गीत। छाया गीत के सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मोहब्बत के तराने रात गुनगुनाती है और दिल में उम्मीदों के चिराग मुसलसल जलते हैं। दुनिया के नज़ारे, ये चांद ये सितारे, उसे एक नज़र में समाए लगते हैं, जिनके बगैर सब कुछ बेजार सा लगता है। जब वो आ जाएं तो मौसम बहार आ जाए, कलियों में शोखी, फूलों पे निखार आ जाए।

वो शाम का ढलना, वो रात का इंतजार, गुनगुनाते नजारों में जुगनुओं की कतारें, चांद की मध्यम चांदनी में वो इजहार मोहब्बत, वो शोखी वो कयामत, बातों ही बातों में क्या बात हो गई, पलकें क्या झुकी, किस्से रात हो गई।

भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं छाया गीत। महफिल में आज उनका ही चर्चा है, हर नजर को ठहरा गए, एक हल्की सी मुस्कुराहट पे अरमान मचल जाते हैं, इस कदर छाए हैं बादलों में जैसे बूंदों का आशियां, खामोश बैठे हैं ऐसे जैसे रात कुछ सोच रही हो। सच कहूं तो ऐसी सादगी का क्या कहना, उस नाज का क्या कहना, उस नाजनी का क्या कहना।

भी क्या कयामत है, देखते तो इधर ही हैं। वो तेरे नजर का निशाना खाली जाता नहीं, प्यार उनसे भला किस तरह छुपाएं। साज़े दिल पे एक तरह ना दिल ने छेड़ा है, चांदनी रात में ये फसाना दिल ने छेड़ा है।

मचलती घटाओं की गुलाबी रंगत, प्यारे वो पल जब बादे सबा ने कुछ कहा, दिल कहता है आपके प्यार की दास्तान ये सुनाती हैं, कुछ तूफान

दिल में मचलते हैं, ये आपका जाना और जाकर फिर लौट आना। तो बंदिशों के दरवाजे मोहब्बत में रहने दो, कुछ दिल की कहो, कुछ कुछ दिल में ही रहने दो।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: सुनिए
1: कहिए
2: सुनिए एक खुशखबरी
1: कहिए ना।
2: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: दीवाना घर से निकल गया,
1: ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया।
0: मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो, जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना।
2: मोहम्मद रफ़ी और साथियों को आप सुन रहे थे, फिल्म धर्मपुत्र की ये कव्वाली थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, एंड दत्ता का संगीत था।